नमस्कार, श्रोता FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। आज शनिवार है, सक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 30 सेकंड हो रहे हैं और हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

श्रोताओ, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने

0: अंडमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, जहां से आप सुने कार्यक्रम वंदन वार।
2: वंदन वार।

आइए सुने आज का चिंतन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, जो कुछ हमारा है वो हम तक आता है यदि हम उसे ग्रहण करने का सामर्थ्य रखते हैं। आइए सुने भक्ति संगीत।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद 6:35 से आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 183। संगीत सरिता कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 6:45 से और इसका पुनः प्रसारण संध्या 6:45 से। आज आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आज इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। सुबह 7 से आनंद लीजिए भूले बिसरे गीतों का और 7:30 से कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। 8 का समय रहेगा समाचारों के लिए और 8:15 से कार्यक्रम होगा त्रिवेणी। चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण समय सुबह 8:30 से। पार्श्व गायक तलत महमूद पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 से। दस बजे पिटारा में गीतों भरी कहानी, कहानी है सपने में ठिठका इंतजार, लेखिका और स्वर ममता सिंह। 11 से चित्रपट संगीत और 11:30 से कार्यक्रम मैटनी शो। 12 आप सुनेंगे समाचार और 12:05 से सजेगी यादों की महफिल।

विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम का आनंद उठाइए। दिन में 1 बजे से और 2 बजे से कार्यक्रम त्रिवेणी। 2:15 से समाचार होंगे और 2:30 से आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। साथियों, आज शनिवार है और आज दोपहर 3 बजे से आप सुनेंगे अपना मनचाहा कार्यक्रम मन चाहे गीत। दोपहर 3:30 से नाट्य तरंग के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे नाटक पोस्टमैन का पहला भाग। के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद है ये और हिंदी अनुवाद किया है P.S. कृष्णस्वामी ने। निर्देशक महेंद्र मोदी। शाम 4 बजे आज पिटारा लाएगा बॉम्बे टॉकीज, जिसमें आप सुनेंगे गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रिकर की बातचीत। 5 बजे से छाया गीत और 5:30 से तराने नए पुराने। 6 बजे का समय रहेगा समाचारों के लिए। तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन सकेंगे समाचारों के बाद 6:05 से और 6:35 से संध्या रंजन। संध्या 7 बजे से विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पार्श्व गायक मनहर उदास द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला। और हां, 7:45 से आज इंद्रधनुष में जिज्ञासा। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत आज सुनो कहानी। सुनो कहानी में आज हम आपको सुनवाएंगे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र। आज आप इसका दूसरा भाग सुनेंगे। स्वर है ममता सिंह का। रात्रि 8:15 से कार्यक्रम चित्रलोक प्रसारित किया जाएगा और 8:45 से समाचार। रात्रि 9 बजे से कार्यक्रम होगा आपके लिए और 9:30 से आज के फनकार, जो केंद्रित होगा पार्श्व गायक तलत महमूद पर। रात्रि 10 बजे से छाया गीत और 10:30 से कार्यक्रम ढलती जाए रात। तो ये थी जानकारी विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। और अब आइए सुनते हैं रामचरितमानस का भाग 183।

सुमंत्र से राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्यकुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का भाग 183। हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। महिला रचनाकारों की बंदिशें इस श्रृंखला की आज अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं और आमंत्रित कलाकारों का हम स्वागत कर रहे हैं। कल्पना जी, हमें बताइए कि क्या शास्त्रीय संगीत में महिलाओं की रचना शैली पुरुषों से भिन्न रही है?
2: जी जी, बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि पहले जमाने में जो रचनाएं बनाई गई वो अधिकतर पुरुषों द्वारा ही बनाई गई है, रचित की गई है जी। तो उसमें उनके मन के भाव परिलक्षित होते हैं या जो वर्णन किया जाता है वो महिला के लिए उद्देश्य से किया जाता है
1: जी, जी।
2: कई रचनाओं में नृत्य के लिए उपयोगी बंदिशें बनाई गई है, किसमें भक्ति भाव है, तो वो एक अलग एस्पेक्ट था। और अब जो महिलाएं बंदिशें बनाती है

0: उनके मन के भाव अधिकतर हमको उसमें दिखाई देते हैं
1: जी।
0: और उसके साथ में श्रृंगार और मधुर शब्दावली और अलग अलग मन की भावनाओं को प्रकट करना, व्यक्त करना, ये अधिकतर हमें दिखाई देता है आजकल की जो महिला रचनाकार बंदिशकार हैं उनके।
1: तो आज किन बंदिशकार की चर्चा आप करेंगे?
0: आज हम डॉक्टर अश्विनी भिड़े देशपांडे जी के बारे में हम जानकारी बताएंगे और उनके द्वारा बनाई हुई बंदिशों को भी प्रस्तुत करेंगे। अश्विनी जी ने संगीत की तालीम जयपुर अतरौली घराने की गायिका और उनकी माँ श्रीमती माणिक भिड़े जी से तालीम हासिल की, जो गान सरस्वती किशोरी अमोनकर जी की शिष्या थी। उसके साथ ही उन्होंने रत्नाकर पाई जी से भी संगीत का मार्गदर्शन प्राप्त किया और शैक्षणिक क्षेत्र में भी आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और बहुत सुंदर सुंदर बंदिशों का उन्होंने रचनाओं का संकलन राग रचनांजलि के माध्यम से, एक पुस्तक के माध्यम से उन्होंने किया है
1: जी।
0: और अनेक शिष्यों को आजकल वो तैयार कर रही है घराने की परंपरा के अनुसार और अलग अलग शैलियों की शिक्षा भी वो प्रदान कर रही हैं
1: जी। तो जी। आज की इस कड़ी में किस राग की चर्चा की जाए?
0: आज अश्विनी जी ने बनाई हुई बंदिशों में से राग सोहनी में एक बंदिश आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, बेग मोरी सुधारो करतार
1: जी।
0: तो राग सोहनी का थोड़ा सा चलन मैं बताती हूँ और अनुजा आपके सामने वो बंदिश प्रस्तुत करेगी
1: जी। स्वागत है।

0: वाह अनुजा जी, आपने तो मंत्रमुग्ध कर दिया। ये जो तान ली आपने इस बंदिश में, बहुत अच्छा लगा। ये खूबसूरत अंदाज हम सबको बहुत पसंद आया, और राग सोहनी पर आधारित ये रचना थी, अपने श्रोताओं को बता दें। अब कल्पना जी बताइए कि हमारे श्रोताओं के लिए अब क्या प्रस्तुत करेंगी आप?
1: अब अश्विनी जी ने गाई हुई, अश्विनी जी ने बनाई हुई बंदिश आपको राग नंद में हम आपको सुनवाते हैं, मोहे करण देरे, ताल तीन ताल में
0: जी।

0: संगीत सरिता की आज की इस कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर अश्विनी भिड़े देश पांडे की। अब इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं और कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में हम कुछ और जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: महिला रचनाकारों की बंदिशें, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। गायन सहभाग रहा अनुजा जोकरकर का, तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंगल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे की।

श्रोताओ नमस्कार। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के साथ हाजिर हैं हम। आइए शुरुआत करते हैं तलत महमूद और आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ।

सोने की चिड़िया फिल्म के इस गाने से हमने शुरुआत की आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की। युगल स्वर थे तलत महमूद और आशा भोसले के, साहिर लुधियानवी की रचना थी, ओपी नैयर का संगीत। साथियों, मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद की आज पुण्यतिथि है, तो आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में उनके कुछ नायाब गीतों को हमने शामिल किया है। चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, जिसमें संगीत है मदन मोहन का, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में। पॉकेटमार फिल्म का ये गाना क्या कहता है, आइए सुने।

0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़ें उससे पहले ये संदेश
1: सुनिए
2: कहिए सुनिए एक खुशखबरी
3: कहिए ना
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर
4: शुक्रिया शुक्रिया
2: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662 तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात सुनिए अपनी पसंद के गाने
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत साथियों इन भूले बिसरे गीतों की मिठास एक सुकून देती है इनका सौंदर्य इनकी खूबसूरती यूं ही बरकरार रहेगी चलिए एक और मीठा सा गीत सुन लेते हैं
5: सावन की रातों में ऐसा भी होता है राही कोई भूला हुआ तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है ऐसा भी होता है

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम पत्र फिल्म से, और स्वर थे लता मंगेशकर और तलत महमूद के। गुलजार की रचना थी सलिल चौधरी का संगीत।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
2: तुम आ गए
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: जी हाँ, इस वाद्य संगीत ने संकेत दे दिया, एक छोटे से अंतराल का समय हो चला है। अभी हाजिर होते हैं।

मोहब्बत की धुन बेकरारों से पूछो, दिले नादान फिल्म का ये गाना आपने सुना। तलत महमूद, सुधा मल्होत्रा और जगजीत कौर के युगल स्वर थे। शकील बदायूनी की रचना को सुरों में ढाला था संगीतकार गुलाम मोहम्मद ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जान

0: श्री रामचंद्र के संगीत से सजा ये गाना आपने सुना तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में। जानिसार अख्तर के बोल थे, फिल्म का नाम था यास्मीन।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता।

तलत महमूद का गाया नगमा फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, जिसका संगीत तैयार किया था नौशाद ने। अनिल बिस्वास का संगीत, प्रेम धवन की रचना, तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजें, फिल्म का नाम तराना।

0: तलत महमूद और लता मंगेशकर के गाए इस युगल गीत के साथ ही अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। प्रातः के 7:30 हो रहे हैं और श्रोताओ, अब लीजिए प्रस्तुत है गाने नए पुराने फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में गाया गया फिल्म आराधना फिल्म का ये गीत। संगीत है SD बर्मन का।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोता, अभी आपने उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म का ये गीत सुना। संगीत था अनु मलिक का। गाने नए पुराने फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाया गया फिल्म दंगल फिल्म का ये गीत। संगीत है प्रीतम का।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अभी आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अवतार फिल्म का ये गीत सुना। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गाने नए पुराने फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से, एफएम बैंड 100।

3.5 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये अंतिम नगमा। और इस गीत को हमने लिया है फिल्म बीवी नंबर 1 से और इसे सुर सजाया है अभिजीत अनुराधा ने और संगीत है अनु मलिक का।

श्रोताओ, इस गीत के साथ ही गाने नए पुराने फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। श्रोताओ, प्रातः के 8 बजने को है। थोड़ी देर में समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गण्यमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से

0: भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित

0: विधत था। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार

0: अध्ययन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। प्रातः 8:15 हो रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी।

श्रोताओं नमस्कार। पुरातन काल से ही नदियां मानव जीवन की आधारशिला रही हैं। नदियों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव रहा है। यही कारण है कि प्राचीन काल से मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई, जिसका कारण था पीने का पानी, खेती और दैनिक काम के लिए जल की उपलब्धता, उपजाऊ भूमि, परिवहन और व्यापार के लिए प्राकृतिक मार्ग, साथ ही नदियों के कारण बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा भी प्राप्त होती थी। इसलिए नदियां केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि जीवन, आस्था और संस्कृति का प्रतीक भी है। इसलिए हमारी संस्कृति में इसे देवता का दर्जा दिया गया है। आज भी नदियों के किनारे आरती और पूजा की जाती है, पर जब हम किसी चीज को देवता मानते हैं तो उसका सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए, हर तरह के प्रदूषण से नदियों को बचाना है, प्लास्टिक और गंदगी से नदियों की स्वच्छता के लिए समाज में जागरूकता फैलाना चाहिए।

नदी हमें अनेक फायदों के साथ अनमोल संदेश भी देती है। नदी हमेशा गतिशील रहती है, वह न रुकती है, न थकती है, न पीछे मुड़कर देखती है। ये एक ऐसा जीवन मंत्र है जो हमें आगे बढ़ने के लिए सफलता प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। नदी का मार्ग आसान नहीं होता। जब उसके सामने चट्टान आती है तो वो उसके चारों ओर रास्ता बना लेती है। कभी वो शांत रहती है तो कभी तेज बहाव से आगे बढ़ जाती है। नदी का ये गुण हमें सिखाता है कि समस्याओं से घबराने की बजाय हमें समझदारी और धैर्य से समाधान खोजकर आगे बढ़ना चाहिए। नदी अपने मार्ग में अनेक परिवर्तन देखती है। कभी वे पहाड़ों में संकरी हो जाती है तो मैदानों में चौड़ी और शांत। ये गुण हमें सिखाता है कि जीवन में बदलाव स्वाभाविक है और हमें हर परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए।

में रेत उठाना इत्यादि पर हमें रोक लगाना चाहिए। हमें नदियों के किनारे पेड़ लगाना चाहिए और नदियों की स्वच्छता पर जोर देना चाहिए। नदी का रौद्र रूप हमें सिखाता है कि प्रकृति जितनी दयालु है उतनी ही शक्तिशाली भी है। यदि हम उसका सम्मान करें तो जीवनदायिनी है, लेकिन हम उसके साथ छेड़छाड़ करें तो विनाश का कारण भी बन सकती है। हमें नदियों के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान का भाव रखना चाहिए ताकि वे हमेशा जीवनदायिनी ही बनी रहें।

नदी को हम जीवनदायिनी, शांत और कल्याणकारी रूप में देखते हैं, लेकिन प्रकृति का ये सुंदर रूप कभी कभी रौद्र रूप भी धारण कर लेता है। नदी का ये उग्र रूप विनाशकारी बन जाता है, तब हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास होता है। नदी के रौद्र रूप के पीछे केवल प्राकृतिक कारण ही नहीं, बल्कि हमारी गलतियां भी जिम्मेदार हैं। नदियों के किनारे अतिक्रमण, वनों की अंधाधुंध कटाई, नदी से अधिक

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। प्रातः 8:30 हो रहे हैं और श्रोताओ, अब लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं फत्तीबाई और साथियों की आवाज़ में गाए ये लोकगीत।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
2: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: श्रोताओ, लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आज हम आपको सुनवा रहे हैं फत्ती भाई और साथियों की आवाज़ में गाए लोकगीत। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में गाया ये एक और लोकगीत।

श्रोता, अभी आपने फतेह भाई और साथियों की आवाज़ में ये लोकगीत सुना। लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं लोक संगीत कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

श्रोताओं, इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र प्रातः के 9 बजने को है। थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बेंच 7.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। और प्रदेश में सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सदस्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, उपभोक्ता मंचों और स्थायी लोक अदालतों सहित कई स्तरों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिनमें 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रदेश में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जयपुर पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा ने किया। प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्री ने बताया कि लोक अदालत के लिए 479 बेंच का गठन किया गया है। इनमें 7,77,000 से अधिक मामलों को सूचीबद्ध किया गया है। लोक अदालत में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मामलों का निस्तारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। कल जयपुर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने नई सैन्य रणनीति के साथ भारत के सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित किया। रक्षा मंत्री ने भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच कमांडरों से भविष्य के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। उन्होंने AI, स्वायत्त प्रणालियों, डेटा एनालिटिक्स और सुरक्षित संचार नेटवर्क को सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता पर मंथन किया गया। वहीं नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है।
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के

0: मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत वैश्विक सांस्कृतिक विमर्श में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। श्री शेखावत कल जोधपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इटली के वेनिस में आयोजित ला बिएनेल में भारतीय कलाकारों की भागीदारी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और पुरानी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शनियों में से एक है। इसमें भारतीय कलाकारों की भागीदारी लोकल से ग्लोबल बनने की दिशा में अहम है।
2: भारत के पवेलियन और भारत के कलाकारों की कला ने पूरे विश्व भर के कला साधकों का, कला प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट किया। न केवल ध्यान आकृष्ट किया, अभी तो भारत का पवेलियन वहाँ आज पूरी इटली में और देश भर के आर्ट लवर्स के बीच में चर्चा का केंद्र बने। भारत की सहभागिता के चलते हुए भारत के आर्ट लवर्स उनकी गहराई, उनके काम की क्षमता, दक्षता, प्रवीणता, इस सब के प्रति विश्व भर के आर्ट लवर्स का ध्यान आकृष्ट होगा।
1: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज और कल दो दिन दो दो पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए दो स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जांच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। ग्राम 2026 के तहत कल हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। ये समझौते राज्य में विभिन्न स्थानों पर फूड पार्क, सीड प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए किए गए इस बिजनेस मीट में निवेशकों, उद्योग जगत और एग्री टैंक विशेषज्ञों के साथ संवाद किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीट को संबोधित करते हुए कहा कि हैदराबाद का लैब टू लैंड मॉडल राजस्थान के लिए प्रेरणादायी है और राज्य सरकार इसे अधिक मजबूती के साथ लागू करना चाहती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में गेहूं खरीद के लिए 25% अधिक टोकन जारी करने और मंडियों में पड़े गेहूं के उठाव के लिए पर्याप्त संख्या में रैक लगाने के निर्देश दिए। श्री बिरला कल कोटा बूंदी क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि FCI सहित सभी खरीद एजेंसियां गेहूं लेकर खरीद केंद्र में आए किसानों की तुलाई का काम सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खरीद का वर्तमान लक्ष्य पूरा होने के बाद भी अतिरिक्त गेहूं खरीद के लिए बारदाना और भंडारण की उचित व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने सभी खरीद एजेंसियों को किसानों को समय पर भुगतान करने के भी निर्देश दिए। बैठक में भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ और NCCF के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कोटा मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी के बाद दो प्रसूताओं की मौत और अन्य महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। कल चिकित्सा आयुक्त BL गोयल के दौरे और प्रारंभिक जांच के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में देर रात एक चिकित्सक सहित तीन कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। UTB में कार्यरत महिला चिकित्सक डॉक्टर श्रद्धा उपाध्याय को सेवा से हटा दिया गया है, जबकि एक अन्य चिकित्सक सहित दो नर्सिंग कर्मियों को निलंबित किया गया है। वहीं वार्ड प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अस्पताल का दौरा कर दवाओं और ऑपरेशन प्रक्रिया के रिकॉर्ड की जाँच की है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर में करीब 100 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि ढाणी गैस कान में एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि अधिकतर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।

0: डाणी के अस्कान गांव से यहाँ पर फूड पॉइजनिंग की सूचना मिली। लगभग 45 ग्रामीण और 34 बच्चे यहाँ वोमिटिंग की और पेट दर्द की शिकायत के साथ यहाँ आए थे। इनमें से अभी 3 बच्चे अपने एडमिट है, बाकी स्वस्थ होकर लौट रहे हैं और बाकी ग्रामीण जनों का इलाज चल रहा है। ऐसे ही लगभग 14 बच्चे और 16 ग्रामीण के सापुरा भी दिखाने गए थे वहाँ पर, उनके इस शिकायत के आधार पर तो सीडीओ साहब को मैंने वहाँ भेजा था। अभी 3 बच्चे वहाँ हैं, बच्चे स्वस्थ हैं और सबका इलाज करवाया जा रहा है।
1: राज्य के अधिकतर स्थानों पर कल दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कई शहरों में अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का असर बना हुआ है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं 17 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 11 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बेंच 7.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। और प्रदेश में सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। प्रातः 9:10 हो रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, जहां से आप सुने कार्यक्रम चित्रलोक।

0: श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में सिंघम फिल्म का ये गाना था। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

इस छोटे से अंतराल के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में अब बजेगा प्रीतम का संगीत, नीलेश मिश्रा के बोल, के की आवाज में वो लम्हे फिल्म का ये गाना।

जावेद अली की आवाज, प्रीतम का संगीत, समीर के बोल, नकाब फिल्म का ये गाना था आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ ब्यूटीफुल डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक मखमली आवाज की।
1: बेचैन नजर बेताब जिगर

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था।

सपने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे, तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

0: जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा।
1: शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म पतिता और गाना ये।

सन 1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है। जलते

आंखों में सपनों की बारात झूमे।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

गजलों के एल्बम तैयार करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुनिए।

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार कर

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका है ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
1: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना? अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हाँ, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भराए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर

रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज़्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो 1000 टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

लौट कर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की।

कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा। हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई। उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भर आया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी।

मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहर सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थीं, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और ओस में नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी माँ ने यहाँ उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस माँ का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नज़दीक पहुँचे। हाथों में ग्लब्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं माँ बन गई हूँ। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, माँ की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ पे लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहाँ तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्चे हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बांझ हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे? ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरो, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप

इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुदी आंखें अपनी माँ को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े। वो फॉर्म प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूँ। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्ही नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई, मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या माँ बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? माँ बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं।

जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं, वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं, दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को माँ का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्चे पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था, मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज़ ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था। ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती। थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है। हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी। पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

हंसते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर ये अचानक ये मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूँ कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला। जन्म देने वाली माँ को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए। अनुष्का के जन्मदात्री माँ भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली माँ है, मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीर और निर्विकार भाव से इस नियत को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने माँ पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपने सुविधानुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सूनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी।

उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी, उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ। मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को

से कस कर लिपट जाती, जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली माँ हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाज़ा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी, अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी, और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं।

पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले माँ ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी माँ की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, माँ तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया। लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलटकर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था, एक नई शुरुआत का। उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल भगर्गी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में ये गजल।

यह आवाज़ थी तलत महमूद की और कलाम था एहसान मीरठी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गज़ल।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की लिखी गजल अभी आपने सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और ये फिल्म थी गजल।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

सुरैया की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था मिर्ज़ा गालिब। गुलाम मोहम्मद की संगीत निर्देशन में ये गालिब की रचना थी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गज़ल। खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में बशर नवाज का लिखा गुलाम है ये, आवाज़ भूपिंद्र की और फिल्म का नाम है बाजार।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। स्वर थे तलत महमूद और शमशाद बेगम के। फिल्म का नाम था बाबुल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सुजाता से सुनिए, आवाज तलत महमूद की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म फुटपाथ का गीत। तलत महमूद ने इसे आवाज दी है, सरदार जाफरी की रचना और खयाम साहब की धुन है।

0: बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे क्यों हैं? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर
2: तलत महमूद की आवाज में फिल्म संग दिल का गीत सुनिए, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सज्जाद हुसैन का संगीत।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए
0: अपनी याद

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत सुनिए। युगल स्वर तलत महमूद और आशा भोंसले की ये फिल्म है बूट पॉलिश।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म टैक्सी ड्राइवर से हमने लिया है। इस गीत को आवाज तलत महमूद ने दी है, रचना साहिर लुधियानवी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

कार्यक्रम में अब सुनिए रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, तलत महमूद की आवाज है, फिल्म का नाम एक साल।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा गीत, तलत महमूद की आवाज है और ये फिल्म है दिले नादा।

0: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम। दोपहर के 1 बजने को है। थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्यमंत्री के साथ पांच अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने सभी को शपथ दिलाई। समारोह में

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। श्री चौहान का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। वर्तमान में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर प्रमुख परिचालन इकाइयों की कमान भी संभाल चुके हैं। राजधानी जयपुर में आज लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला हो रही है। इसमें नए आपराधिक कानूनों, साइबर क्राइम तथा दिव्यांग कानूनों पर मंथन किया जा रहा है। बिड़ला सभागार में हो रहे इस कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला में न्याय प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने तथा नए कानूनों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। अजमेर की ऐतिहासिक पहचान से जुड़े तारागढ़ किले और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र का कायाकल्प किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल इस बारे में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। गौरतलब है कि आजादी के बाद पहली बार इस किले और क्षेत्र के समग्र विकास तथा संरक्षण की व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। राज्य सरकार ने पिछले बजट में इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज एक और कल दो पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए 2 स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जांच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 14 और 15 मई को चलाया जाएगा। 2 दिन के इस अभियान के तहत महिला सुरक्षा कानून और आत्मरक्षा के तरीकों के साथ महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फूलचंद मीणा ने बताया कि अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, पार्क और भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं से अभद्रता करने वाले लोगों के खिलाफ मौके पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत कालिका टीम और निर्भया स्क्वाड को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टीमें सार्वजनिक स्थानों पर लगातार गश्त करेंगी। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अदम्य साहस और वीरता के पर्याय महाराणा प्रताप को नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन विदेशी दासता के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव का दौर बना हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी में कल तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने आज भी इन जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट बताया है। वहीं कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदला। नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी और सवाईमाधोपुर में दोपहर बाद धूल भरी आंधी चली और हल्की बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान में आज भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, दोपहर के 1:05 हो रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।
2: बहुत प्रसिद्ध हुए हैं।

शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर इस गीत के साथ। ये गीत यकीनन आपकी प्लेलिस्ट में है, हमने देख लिया है।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। नरेंद्र चंचल की आवाज थी और फिल्म का नाम था बेनाम। जी, तो ये गीत सुनकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि पर्दे पर इस गीत को किसने गाया था। जी हाँ, पर्दे पर चंचल साहब भी थे। जब हम उन्हें देखते हैं तो चंचल साहब इस गीत को पर्दे पर गा रहे होते हैं।

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कई खूबसूरत और भावनात्मक शब्द छिपे हैं जिन पर गीत चुने जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द हो सकते हैं जिंदगी, आदमी, पुकार, मुंह, मुसाफिर, गली, विश्वास, श्रद्धा, सफलता, चोटी, जीवन और बेनाम। बिल्कुल, बहुत सारे शब्द आपने बिल्कुल सही चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मन के उस जटिल रूपांतरण को दर्शाती है जहां एक व्यक्ति शून्यता से पूर्णता की ओर यात्रा करता है। यहां बेनाम जिंदगी केवल गुमनाम ही नहीं बल्कि उस मानसिक अलगाव का प्रतीक है जहां व्यक्ति स्वयं की पहचान खो चुका होता है। तर्क और बुद्धि जहां हार जाते हैं वहां स्नेह की पुकार काम कर जाती है। ये पुकार व्यक्ति के भीतर सोए हुए मुंह या जीने की इच्छा को फिर से जीवित कर देती है। अतीत के दुखों, असफलताओं और पुरानी सोच से मुक्त हुए बिना नए शिखर तक पहुंचना संभव नहीं। जब मन में विश्वास अंकुरित होता है तो बाधाएं मार्ग का पत्थर नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाती हैं। तो आज के गीत भी आपने लिखे हैं, बेशक मंदिर मस्जिद में बेनाम तुझसे नाराज नहीं, मितवा मुंह मुंह के धागे करके आपने कोशिश की है कुछ गानों की जो हमारी प्लेलिस्ट से या हमारी पसंद से मेल खाते हैं। बाकी आपने जो अपनी इबारत लिखी है वो बहुत खूबसूरत तरीके से पेश की है।

एक श्रोता लिखते हैं कि अगर जीवन नाटक मालूम पड़ने लग जाए तो आदमी अक्सर शांत हो जाता है और दुनियावी धारा से दूर होकर जीने की कोशिश में सिर्फ संघर्ष करता रह जाता है। इसी समय किसी अपने की पुकार उसमें मुंह के धागे जोड़ देती है। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए वो मुसाफिर अतीत को पीछे छोड़ सफलता के नए आयाम छू लेता है और रेडियो पर बजने लगता है दिल को छूने वाला गीत, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी इबारत लिख रहे हैं और आपने जो गानों का कयास लगाया है वो बहुत हद तक सही भी लग रहा है, लेकिन आपको इसके लिए पूरा कार्यक्रम सुनना होगा और सुरीले सफर में हमारा साथ देना होगा। आइए सुनते हैं अगला गीत और उसके लिए हम सवाल भी आपसे करने वाले हैं। ये गीत है फिल्म आजाद से, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बतलाना है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, अपलम चपलम, सुना है ना आपने, बहुत ही मशहूर गीत है, किस दिग्गज नृत्य जोड़ी पर फिल्माया गया है, मतलब जो नर्तकी वहां नृत्य कर रही हैं उनके नाम आपको हमें बताने हैं। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

इस गाने में कौन सा शब्द आया है? याद कीजिए, गली।

जी, तो ये स्वर जो आपने सुने बहुत ही खूबसूरत स्वर थे, फिल्म आज़ाद से हमने लिए थे, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के। पर्दे पर दो नर्तकियाँ इस नृत्य को करती हैं। हमने आपसे पूछा था कि ये कौन है, किस नृत्य जोड़ी पर ये गीत फिल्माया गया है, आपको उनके नाम बताने हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र के सभी श्रोताओं को नमस्कार के साथ, आज का ये गीत मुझे लग रहा है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद ही गाना हो सकता है। कैसे होगा बताइए, गली गली पर तो अभी आपने जो गाना सुना अपलम चपलम ये हो गया है, तो ये गाना तो हमारी लिस्ट में आज शामिल नहीं है। और दूसरी बात, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज बहुत तरीके से अपनी लिस्ट बनाई है और कई कई गाने उनको मतलब हमारी पसंद के मुताबिक हमारी पसंद मेल भी खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देने वाला सुंदर परिच्छेद कितनी सहज सुंदर शब्दों में साझा किया है आपने, जो जीवन की निराशा दूर कर देता है और आत्मविश्वास के साथ ये नश्वर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है। आपने कुछ गानों के जिक्र किए हैं, मैं बेनाम हो गया, बिल्कुल सही गाना आपने लिखा था, आगे भी आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, आप देखिएगा ये गाने हमारे यहाँ से बजते हैं इस कार्यक्रम में या नहीं, तो अगर हाँ तो हमारी और आपकी पसंद ज़रूर मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ गाने ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल सही पसंद किए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बातें कम और गाने वो भी पुराने सुनने ज़्यादा मिलें तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से उभर कर आने वाले शब्द हैं आदमी पर, आपने बहुत सारी लिस्ट दी है, तो आप भी सुनिएगा आज का ये सुरीला सफ़र। हमारे साथ इस सफ़र में आपको बने रहना है और ये देखना है कि आपने जो गाने पसंद किए हैं क्या वो हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने बहुत सारे गानों को पसंद किया है, अब देखना यह है कि आपकी पसंद से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ सफलता किसी के प्यार पाने पर अवश्य ही प्राप्त हो सकती है और यह आत्मीय स्नेह की अनुभूति बेजान जिंदगी में भी जीवन के अनेक रंग भर देती है। ऐसी ही भावनाओं का प्रतिबिंब आज के शब्द गीतमाला में भी नजर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के गीत शायद इस प्रकार से हो सकते हैं, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, आप भी सुनिएगा और इस सुरीले सफर में हमारे साथ आपको बने रहना है, ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए कि आपकी पसंद हमारी पसंद से कितना मेल खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपका सुरीला सफर तय करने के लिए मैं आ गई हूँ, बहुत अच्छी इबारत लिखी है और इस इबारत से आपको कुछ गीत आए हैं याद आ गए हैं जिसका जिक्र आपने हमें किया है। तो आपको बताना क्या है कि फिल्म आज़ाद का ये जो गीत है इसमें ये नृत्य किन दो नर्तकियों ने किया है, उनके नाम आपको पटापटा में बताने हैं, फिर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

और इस गीत को भी आप महसूस करेंगे कि ये किसी नायक या नायिका ने नहीं इसे फिल्मी पर्दे पर गाया है, बल्कि समूह स्वर में ये गीत गाया गया है। आपके लिए सवाल ये है कि फिल्म किस्मत का ये गीत किसने गाया है? हम आपको बता देते हैं, इस गीत के गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीत दिया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते हैं ये गीत। अपने जमाने का बेहद मशहूर गीत, आपको इनके गायक कलाकारों के नाम बताने हैं। और इस गाने से क्या शब्द निकलता है? चोटी।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दार्शनिक तथ्यों को उजागर करती है। कहा गया है कि निराश में जीवन में एक क्षीण प्रेम पूर्ण रोशनी मार्ग प्रशस्त कर देती है और मन बरबस आकृष्ट हो उम्मीद के साथ उस तरफ गतिमान हो उठता है। अपनी दृढ़ निश्चय संकल्प संग हासिल कर ही लेता है। इबारत गंभीर है मगर बहुत रोचक। संगीत में प्रस्तुति का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम का सुंदर पक्ष है कि मित्रों द्वारा प्रेषित कमेंट जो ज्ञानवर्धक और तथ्यपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप जो इबारत लिखते हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से कहते हैं और उसे पढ़ने में हमें भी बहुत मजा आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधारण मनुष्य के सफल होने का राज किसी जादुई फार्मूले में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों और दृष्टिकोणों में छिपा है जिनमें कोई भी अपना सफर शुरू कर सकता है। सफलता अक्सर असाधारण काम करने से नहीं बल्कि साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ करने से मिलती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा अंतर निरंतरता का ही है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गीतों को लिखा है कि

ये गीत शायद आज की प्लेलिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक लग रहा है, मैं उत्सुक हूँ कि आप लोग कैसे सोशल मीडिया के जरिए श्रोताओं को जोड़ेंगे और कौन से सुरीले गाने सुनवाएंगे। तो आप ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता लगेगा कि कैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का फेसबुक से परिवार जुड़ा हुआ है। आप भी उस परिवार से जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और इस कार्यक्रम को समझने में हालांकि थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में इतनी ताकत होती है कि आसमान से तारे भी नाचते हुए जमीन पर उतर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बेशक आत्मा की पुकार बड़ी शक्तिशाली होती है, सफल व्यक्ति वही होता है जो इस पुकार को सुनकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलकर अपनी मंजिल को पाता है, और आपके साथ ये सफर भी सुरीला ही होने वाला है। बिल्कुल सुरीला होगा अगर आप इस सफर में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। तो अब दो सवाल आपके लिए है ना। पहला यही कि फिल्म आजाद का जो नृत्य गीत अभी आपने सुना वो किस पर फिल्माया गया था, नृत्य जोड़ी कौन थी, और फिल्म किस्मत का जो गीत अभी आपने सुना ये हिंदुस्तान हमारा है ये गीत, उसमें चोटी शब्द से ये गीत आ गया था, इसमें गाने वाले कलाकार कौन थे। और बढ़ते हैं अब आगे, वही गीत हमने चुना है जो फिल्मी पर्दे पर कोई नायक या नायिका नहीं गा रही बल्कि अन्य कलाकार गा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन की धुन।

0: उड़ बैठी बजजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजजवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बजजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

0: पनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या
0: रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे।

गीत जो है दो अभिनेत्रियों डांसर पर अभिनेत्रियां जो डांसर अभिनेत्रियां थी उन पर फिल्माया गया, यानी जो डांसर्स थी नृत्य जोड़ी थी उन पर फिल्माया गया था, वो थी सई और सुब्बुलक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा है आपने, आपका जवाब और कई सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये नृत्य जोड़ी थी सई और सुब्बुलक्ष्मी की।

और हमारा दूसरा सवाल था कि फिल्म किस्मत में जो गीत आपने सुना, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस गीत में गाने वाले कलाकार कौन थे? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने कि आवाजें प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी की थी जिन्होंने इस गीत को गाया था, और साथ में साथी भी थे जिन्होंने इस आवाज को मिलजुल कर आवाज दी थी, यानी प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी ने इस गीत को गाया था, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि सही जवाब आपने हमें दे दिया है। हमारी एक श्रोता लिख रही है कि सफर का टिकट तो ले लिया है कि आपके साथ चल लें। बिल्कुल चल लें, जब सफर का टिकट आपने ले लिया है तो देर किस बात की, हमारे साथ इस सुरीले सफर में शामिल हो जाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए तैयार सभी मित्रों को दोपहर का नमस्कार, और इस सुरीले सफर की पायलट मंदाकिनी जोशी जी को भी नमस्कार। आपके साथ एक घंटे के सुरीले सफर के लिए हम सभी संगीत प्रेमी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और हम भी तैयार है आपको इस सुरीले सफर में जगह जगह जाकर अलग अलग चीज़ों की सैर करवाने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे। अच्छा, आपने पूरी एक कविता लिख डाली है, आप वही कवि श्रोता हैं हमारे। एक बेनाम जिंदगी जीता हुआ वो आदमी भीड़ में रहकर भी भीड़ से दूर था, चेहरे पर खामोशी की धूल जमी थी और दिल जाने कितने दुखों से चूर था। न कोई अपना उसे आवाज़ देता, न किसी चौखट पर उसका इंतज़ार था, वो चलता रहा उस उम्र भर में यूं ही तन्हा, जैसे रेगिस्तान में भड़का कोई गुब्बार था। पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे, रातों की चुप्पी में उसके आंसू तकिए से लिपट कर सोया करते थे। फिर एक दिन किसी आत्मीय पुकार ने उसके सुने मन को छू लिया, जैसे बरसों से की धरती पर पहली बारिश ने प्यार लिख दिया। एक आवाज़ थी जिसमें अपनापन था, एक नज़र थी जिसमें श्रद्धा का उजाला था, उसने पहली बार महसूस किया वो भी किसी के लिए अनमोल निराला था। क्या बात है, वो मुसाफिर फिर मुड़ पड़ा जीवन की ओर, पुरानी गलियों को पीछे छोड़ आया, टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को जोड़कर अपने भीतर नया सूरज उगाया। दर्द अब भी था उसके सीने में, मगर आंखों में उम्मीद का दीप जलने लगा। जो आदमी खुद को खो चुका था, कहीं वो फिर से खुद से मिलने लगा। क्या बात है, और देखो जिसे दुनिया ने बेनाम कहकर ठुकराया, वही एक दिन की चोटी पर मुस्कुराया, क्योंकि प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा बीज है, पत्थर दिल में भी जीवन उगा जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आप रचते हैं, आपको मैं सैकड़ों साधुवाद देती हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इस सप्ताह में तीसरी बार दर्शन देने के लिए, सुरीली आवाज़ के लिए, मधुर वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये हमारी ड्यूटी है ना, आप इसे लिख लेते हैं कि क्या हुआ कब आने वाले हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी है, जब जब ड्यूटी लगेगी तब तब हमें तो आना ही पड़ेगा। अब ज़्यादा तारीफ नहीं करूंगी अपनी, फिर हमारे श्रोता शिकायत करेंगे कि मंदाकिनी जी तो अपनी तारीफ में लगी रहती हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यार बरसाया है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। चलिए तो इस सुरीले सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हमने उन गीतों को चुना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर किसी नायक या नायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके साइड आर्टिस्ट जो हैं या अन्य कलाकार जो हैं उन्होंने इन गीतों को गाया है, या बैकग्राउंड गीत के रूप में ये गीत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आई हूँ, सलिल चौधरी का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है दो बीघा जमीन।

0: और इस गीत में आपको शब्द मिलेगा पुकार।
1: जमुना की तू कह
0: याद कीजिए फिल्मी पर्दे पर कौन कौन है।

हमारे और भी श्रोताओं ने सही जवाब हमें दे दिया है। आप लिखते हैं कि सही और सुबह लक्ष्मी दो नर्तकियां हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर नृत्य किया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो आपने गीत सुनवाया था हिंदुस्तान हमारा है, उसे आवाज़ दी थी अमीरबाई कर्नाट की और खान मस्तान ने। जी, इसमें प्रदीप कुमार की आवाज़ है, प्रदीप जो हमारे गीतकार प्रदीप हैं, कवि प्रदीप हैं, उनकी आवाज़ है और उनका साथ अमीरबाई कर्नाट की दे रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गुमनामी के अंधेरे में खुद को समेटे हुए व्यक्ति भले ही दुनिया की नजरों से उजल हो, लेकिन जब कोई निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन से उसे पुकारता है तो उसके भीतर की सोई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह आत्मीयता उसके मन में जीवन के प्रति एक नया आकर्षण पैदा कर देती है। और आप लिखते हैं कि वही पथिक जो कल तक ठहर चुका था, अब अतीत की संगीन गलियों निराशा को पीछे छोड़कर अटूट आत्मविश्वास के साथ नई राहों पर निकल पड़ता है। यही संकल्प और श्रद्धा उसे साधारण से असाधारण बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जो शब्द है वो अत्यंत गहरे, सकारात्मक और भावनात्मक हैं, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों ही शब्दों में आदर और निष्ठा की भावना छुपी होती है। श्रद्धा मन का वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को किसी उच्चतर सत्ता, ईश्वर, गुरु या आदर्श को समर्पित कर देता है और उसमें ही अपनी भलाई समझता है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक तरीके से आपने अपनी बात हमें रखी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर के साथ चलने से कि गीत नजर आएंगे इबादत को पढ़ने से। बिल्कुल, इबादत पढ़ी और देखिए आज तो बहुत सारे श्रोता

0: हमारी पसंद के करीब आ गए हैं, धीरे धीरे ऐसे ही होगा कि हम आपको एक इबारत देंगे और आप समझ जाएंगे कि भैया आप कौन सी गीत आज उद्घोषक लेकर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान जी को हार्दिक धन्यवाद वो देना चाहते हैं। एक श्रोता ने जानना चाहा कि मैं बेनाम हो गया, ये आवाज़ क्या नरेंद्र चंचल की मधुर आवाज़ थी और वही पर्दे पर भी गा रहे थे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, वो मखमली आवाज़ नरेंद्र चंचल साहब की ही है और पर्दे पर भी वही इस गीत को गा रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इस सुरीला सफर के अंक में हमने एक प्रयोग किया कि उन गीतों को चुना जाए जिन्हें किसी फिल्मी नायक या नायिका ने न गाया हो पर्दे पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो हैं, अन्य कलाकार जो हैं, या बैकग्राउंड गीत के रूप में उस गीत को फिल्माया गया हो या किसी डांसर ने उस पर नृत्य किया हो, ऐसे कुछ गीतों को चुना जाए। तो आज हमने उन्हीं गीतों को चुना था और आप हर एक गीत को सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि पर्दे पर इस गीत को कैसे फिल्माया गया है। एक और गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं, दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। इस गीत में से शब्द आया है चिड़िया।
1: चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया,

आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, छुन छुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

जी, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत काफी हद तक मेरे पर ही फिट बैठती है। अच्छा, आप पर फिट बैठती है कैसे? कि महंगी कॉन्वेंट स्कूल की मेरी पढ़ाई, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ, आगे मेरी हायर एजुकेशन बहुत खर्चीला। मैं कंफ्यूजन में था कि ये सब कैसे होगा। फिर मेरी इंटरनल आत्मी पुकार सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन और साइड बिजनेस करके अपनी हायर एजुकेशन का खर्चा निकालूंगा। ऐसा ही हुआ। उदासी की

गलियां को छोड़कर जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ माता रानी के आशीर्वाद से सफलता हासिल करी और आज बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, हमारे सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है कि साई और सुबु लक्ष्मी वो नर्तकियां थी और गायिका थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। आपने एक ने सही जवाब दिया कि किस्मत के गायक प्रदीप, कवि प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी हैं। बिल्कुल सही बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 20 मिनट शेष रह गए हैं, अभी भी ओल्ड सॉन्ग चल रहे हैं, बहुत अच्छे। अरे तो ओल्ड सॉन्ग ही तो चलने वाले हैं अंत तक, आप इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं ना। वहीं श्रोता लिखते हैं कि आदमी बेनाम होकर मुख्य धारा से दूर होकर तब जीने लगता है जब वो सभी ओर से हताश हो जाता है। जीवन उसे निरर्थक लगने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। हताशा के उस समय उसके किसी अपने की पुकार से उसके आत्मविश्वास में नई जान आती है और अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ वो अपनी आगे की मंजिल तय कर लेता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दुख से भरी हो या सुख से ही भरी हो। जीवन नैया डगमग डगमग चलती है, कई हिचकोले आते हैं, उसी में फूलों भरी जिंदगी आती है, कांटो भरी शाम भी। व्यक्ति इन्हीं उतार चढ़ाव में अपने को एडजस्ट करते हुए चलता है। अगर जीवन के सफर में सिर्फ फूल ही फूल हो या कांटे ही कांटे हो तो एक रास्ता हो जाएगी, सुख दुख के अनुभव से वंचित रह जाएगा। खट्टा मीठा कड़वा कसेला सभी प्रकार के अनुभव जीवन में आते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो इस सुरीला सफर हमने रखा है जहां पर ये सारे स्वाद हमें महसूस करने हैं, है ना। और अंत तक हमें अपना साथ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं फिल्म सफर के साथ मन्ना डे और साथियों की आवाजें, इंदिवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। याद कीजिए इस गीत को फिल्माते समय आपको किन का चेहरा याद आता है। हाँ, किसी नायक या नायिका ने तो इस गीत को पर्दे पर नहीं गाया है, है ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि चुन चुन करती आई चिड़िया, जो गाना आपने दिल्ली दूर नहीं का सुनवाया था, उसके मुखड़े में इबारत में कोई शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है? चिड़िया शब्द हमने आपको बताया था ना कि चिड़िया शब्द वहीं से उस गीत को लिया गया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत एकमात्र ऐसा माध्यम है जो दुखों के लिए भी काम कर सकता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, मैं एक मुसाफिर बेशक पुरानी गली छोड़कर बेनाम जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा के बल पर एक दिन सफलता जरूर हासिल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 2 बीघा जमीन का ये गाना मेरे पिताजी आखिरी दिनों में हमेशा सुनते थे। उनकी मृत्यु मई महीने में हुई थी। बिल्कुल, ये गीत है ही ऐसा जहाँ इंसान पुराने जो लोग हैं वो इसे सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी भी तो यहाँ मुसाफिर ही हैं, हमें अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, जाने कब किस मोड़ पे मंजिल मिल जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों को आज मैं नमस्कार कहता हूँ, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और विविध भारती जिसे सुनकर हम कहेंगे, हे विविध भारती, जिस गली में जिस घर में रेडियो बजने रहा हो उस गली से गुजरना नहीं, क्योंकि विविध भारती हमारी खास पसंद है। और अब हम इस सफर के आखिरी सोपान पर हैं, जहां पर हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत। आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम अपनापन। फटाफट जवाब भेजिएगा, ये बताइएगा कि आदमी मुसाफिर है, जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं इसमें शब्द आता है मुसाफिर और आदमी। ये मुख्य रूप से किस अभिनेता और बाल कलाकार पर फिल्माया गया था, और पर्दे पर इस दौरान आपको कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं? जी हाँ, ये गीत जो पर्दे पर गा रहे हैं वो अभिनेता कौन है और बाल कलाकार कौन है उनके साथ, और इसी गाने में मुख्य दृश्य के दौरान कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में सवार दिखाई देते हैं? फटाफट लिखिएगा, बहुत कम समय बचा है।

एक श्रोता ने लिखा है कि कितना बढ़िया गाना है चुन चुन करती आई चिड़िया। इस चिड़िया के ऊपर कई कहानियां बनी हुई हैं जिसको बच्चे बड़े ध्यान से प्रेम से सुनते हैं।

तो इस सवाल का जवाब आपने दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आदमी मुसाफिर है गाना मुख्य रूप से अभिनेता सुधीर दलवी, जिन्होंने एक भिखारी की भूमिका निभाई थी, और बाल कलाकार निवेदिता जोशी थी जो बाद में निवेदिता सर्राफ के नाम से जानी गई, उन पर फिल्माया गया था। और इस गाने के मुख्य दृश्य के दौरान कौन थे, अभिनेता जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित भी बस में सफर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? कुछ याद आया आपको?

तो सुरीला सफर में आज इतना ही। आज का ये सफर आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ यूं सफर करना, और सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में इस तरह से गोते लगाना बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो बस आज का ये सफर यहीं तक। इस कार्यक्रम से, इस सफर से आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

मित्रों, त्रिवेणी में आज विषय थोड़ा खास है, थोड़ा दिल से जुड़ा हुआ और शायद थोड़ा सा चुभने वाला भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती की, लेकिन सिर्फ दोस्ती की नहीं, सही दोस्त चुनने की। दोस्ती एक ऐसा शब्द जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, कॉलेज के किस्से, हर जगह दोस्त हमारे साथ होते हैं। लेकिन क्या हर दोस्त हमारे लिए सही होता है? शायद नहीं। इसीलिए दोस्त चुने, मगर ध्यान से। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? सोशल मीडिया पर आपके कितने फ्रेंड्स हैं? सैकड़ों, हजारों? लेकिन अगर रात 2 बजे आपको किसी की जरूरत पड़े तो आप किसे कॉल करेंगे? बस यही फर्क है दोस्तों की लिस्ट और सच्चे दोस्त में। साथियों, दोस्ती सिर्फ टाइम पास नहीं होती, ये एक जिम्मेदारी होती है। दोस्ती वो रिश्ता है जो हम

दोस्त वो नहीं होता साथियों जो सिर्फ खुशियों में साथ हो, बल्कि वो है दोस्त जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहे, आपकी कमियों को जानकर भी आपको स्वीकार करे और जरूरत पड़े तो आपको सही रास्ता भी दिखाए। आज के समय में दोस्ती का एक नया रूप सामने आया है, ऑनलाइन दोस्ती। लोग एक दूसरे से मिले बिना ही दोस्त बन जाते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। हर प्रोफाइल के पीछे एक सच्चा इंसान ही हो, ये जरूरी नहीं। कभी कभी हम पूरी कोशिश के बावजूद गलत लोगों से जुड़ जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करें, सबक लें और धीरे धीरे दूरी बनाएं। याद रखें, गलत दोस्ती कभी एकदम से नुकसान नहीं करती, वो धीरे धीरे असर करती है। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त मेहनत करते हैं, सपनों को साकार करने की योजनाएं बनाते हैं, तो आप भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं, तो आप भी वही करने लगेंगे। इसलिए दोस्त चुनना दरअसल अपनी जिंदगी का रास्ता चुनना है।

साथियों, सवाल ये उठता है, कैसे पहचाने कि कौन सही है और कौन नहीं? सिंपल सी बात, जो आपकी बुराई में साथ दे वो दोस्त नहीं, जो आपकी अच्छाई, सफलता, शोहरत और उपलब्धियों से ईर्ष्या करे वो दोस्त नहीं, जो आपकी गैर मौजूदगी में आपका उपहास करे वो दोस्त नहीं, जो आपको खुद से दूर कर दे वो तो बिल्कुल भी दोस्त नहीं। बात करें सच्चे दोस्त की, तो सच्चा दोस्त वो नहीं जो आपकी हर बात पर हाँ कहे, बल्कि वो है जो ज़रूरत पड़ने पर ना कह सके। सच्चा दोस्त आपकी गलतियों पर आपको रोकेगा, आपकी हार में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी जीत में आपसे ज़्यादा खुश होगा। सच्चा दोस्त आपकी इज्जत करता है, आपकी बातों को समझता है, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, वो कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा और हमेशा आपके साथ सच्चा रहेगा। साथियों, दोस्ती में भरोसा करने से पहले समय दीजिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए। जिंदगी एक सफर है और सच्चे दोस्त इस सफर के साथी। दोस्त बनाइए लेकिन सोच समझकर, उनके साथ दिल से जुड़िए लेकिन समझदारी के साथ। जिंदगी को आसान बनाना है तो सही दोस्त का चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते।

0: দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: শপথ গ্রহণ কি প্রক্রিয়া কে অনুসার সবসে পহলে শুভেন্দু অধিকারী নে মুখ্যমন্ত্রী কে রূপ মে শপথ লি। উসকে বাদ এক এক কর মন্ত্রী কে রূপ মে দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্র পল, অশোক কীর্তনিয়া, ক্ষুদিরাম টুডু আর নিশীথ প্রামাণিক নে শপথ লি। আকাশবাণী সমাচার কলকাতা সে কাশফিন নাহার।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
2: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से

0: दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता

0: को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के। फिल्म का नाम है ताजमहल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड का गीत। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सचिन देव बर्मन की है।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आपको

भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

0: से है।
1: मोहम्मद रफी की आवाज़, फिल्म का नाम गंगा जमुना, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद साहब की धुन।
0: होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होइ बेकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होइ बेकरी, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कटक होइ बे।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: खत लिख दे।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार शंकर जयकिशन थे। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब खत्म होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहां है? कार्यक्रम

और ये हैं विनोद कुमार अढ़िया, भारती अढ़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अढ़िया, इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सकें। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुँचा सकें। चलिए, आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

ये स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था लैला मजनू। सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं। गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना। मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए। मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई। यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या?

0: खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना। मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए। मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई। यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या? तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर? हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है। शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंदस्वामी
2: ये तो हमसे होती नहीं। ये हाथ पांव काम करने के काबिल ही कह रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
3: और चारा ही क्या है? अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं। मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
2: शिंगारम, शिंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
3: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
2: अरे कुछ मत पूछो दोस्त।
3: क्यों?
2: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है। अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
3: क्यों, कुछ झगड़ा तकरार?
2: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ।
3: तो?
2: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो, पता चल जाएगा।
3: अच्छा ऐसी बात है।
4: अजी पोस्टमैन साहब जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
5: कहिए क्या बात है? कैसे बुलाया आपने?
3: अजी बैठिए भी। अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
5: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
3: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
5: है क्यों नहीं,
3: तो लाइए दे दीजिए ना। मेरा नाम सिंगारम है।
5: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
3: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
5: वाह ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
3: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
5: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
3: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम सिंगारम को नहीं जानते। जिस शिवकामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
5: वरना क्या होगा?
6: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नामो निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
3: हाँ हाँ लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
5: सिंगारम ये न भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं। तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा। अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
6: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
3: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ? देखना ये श्रृंगारम

0: जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
1: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
0: अच्छा,
1: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
0: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ, तो पढ़ो।
1: लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
0: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
1: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
0: बेचारा अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
1: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूंगा आपका बेटा धन्य है।
0: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहां कोई खतरा तो नहीं?
1: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
0: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
1: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
0: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती हैं।
1: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
0: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
1: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
0: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
1: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
0: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ, आओगे ना बेटा?
1: आऊंगा माँ जी।

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने, तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना?

0: अरे जरा देखकर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: जी जी कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारा? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी न पिया कर। ओह मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम से।
0: अरे अरे अरे नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा ये ले पानी। और अब
0: जी जी इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगे।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा? कौन जाने।
1: शिंगारम सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये ऊल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। चला जाए यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है या?
0: अच्छा अच्छा अच्छा बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं

अरे सामने वो बदमाश शिंकारम खड़ा है, अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है, अब क्या करूं?

0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है यार।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं

0: अरे सामने वो बदमाश शिंकारम खड़ा है, अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है, अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं भाग थोड़े ही हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। अरे
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे
0: साथ।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत
0: और कोई क्या करेगा।
2: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो रोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
2: अच्छा?
0: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकूंगी।
2: अच्छा ये बात है।
0: छोड़ दे, छोड़ दे।
3: जहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे, दिन भर एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
2: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
3: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊं तो चारों घेर कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है तूने?
2: अगर मैं अपने दल बल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
0: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
4: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
0: जी, इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
4: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
0: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
4: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
0: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
4: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है?
0: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार कर

0: अब वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
1: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
0: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
1: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
0: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
1: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने? चली गई, कितने सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये, छी छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है? जब उसका मंगेतर है तब, ओह, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है, लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़की के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से

0: मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
1: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
0: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
1: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ आओगे? बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
0: ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
0: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
1: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
0: मैं लाता हूँ। दवाई?
1: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
0: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
1: बेटा, तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
0: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्म तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
1: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं। जरा जरा मेरे पास आओ।
0: लो माँ।
2: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे P.S. कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी
1: पाडाला पिकलाय आंबा आला बाय पाडाला पिकलाय आंबा हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा
0: और ये हिंदी गाना
1: हो पंख होते तोड़ा तेरे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का

0: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम हुआ करता था 1975 के जमाने से, और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे

0: हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कोना चाहिए, ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे
1: अच्छा
0: बोली
1: अच्छा
0: तुम मेरे लिए गाओगी? तो बोला हाँ
1: ओ
0: जरूर गाओगी।
1: क्या बात है,
0: बहुत मजा आया उस
1: वाह
0: दिन
1: वाह।
0: बच्चों से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का
0: जी
1: हुआ,
0: जी
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी,
0: लिस्ट
1: आपको
0: बनाई
1: याद
0: थी,
1: है?
0: इतना सा तो नहीं लेकिन एक दो मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए,
1: जी
0: क्या अजीब दास्तां है ये,
1: हाँ हाँ
0: इस तरह
1: हाँ
0: के सब पुराने गाने।

0: वाह वाह, क्या
1: जितना
0: बात है।
1: दिया था।
0: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
1: नहीं करती, पुरुष लोग
0: तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
1: राइट, राइट।
0: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
1: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
0: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका
1: भूमिका
0: इस नाटक में निभाई थी।
1: हाँ जी।
0: जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब

0: अल्लाह साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला। तीन
1: क्या
0: महीने
1: बात,
0: का वो टूर था हमारा,
1: क्या बात है।
0: और दो बेटियाँ, एक
1: हाँ हाँ
0: 4 साल
1: हाँ
0: की एक 6 साल की। लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की। मैं
1: हाँ
0: बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से।
1: हाँ
0: और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लेजेंड्स हैं
1: जी,
0: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज़ में, हमको मतलब देखा हुआ जाके,
1: जी
0: कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने,
1: अच्छा
0: ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे।
1: वाह, क्या
0: बहुत मज़ा आया
1: बात
0: टूर में,
1: है।
0: उनसे वो सीखने को मिला।
1: तलत साहब को आपने याद
0: तलत
1: किया,
0: साहब तो
1: तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाएं अपने
0: ओके
1: श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
0: मराठी में गाने थे।
1: जी
0: हाँ
1: जी

0: आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
1: जी
0: लोगों ने कहा कि आप तो खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बंक के इतने सारे नहीं कहा। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा
1: अच्छा
0: एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला भी वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में।
1: अच्छा
0: मेरी सब सहेलियाँ मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ
1: ओहो
0: मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता
1: क्या
0: है,
1: बात है,
0: कुछ लिखा हुआ। कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
1: सोशल मीडिया
0: तो
1: पर
0: सोशल मीडिया पे,
1: ओहो हो
0: व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
1: क्या
0: हूँ।
1: बात है।
0: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो वो
1: हाँ
0: तुम्हारा करके गाती हो। वो
1: हाँ
0: प्रमिला दादा का गाना लगता है,
1: अच्छा,
0: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज़ नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी
1: जी
0: पहले
1: जी
0: गाने,
1: जी
0: अभी नहीं आवाज़ जाती है, काली एक काली पाँच काली एक तक
1: हाँ हाँ
0: जाती है।
1: हाँ
0: तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा
1: बराबर
0: सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है इस
1: जी
0: क्लासिकल
1: जी
0: म्यूजिक का।
1: हाँ
0: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये
1: जी
0: मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके
1: ओहो
0: हारमोनियम पे सिर्फ
1: क्या बात है,
0: भेजे।
1: अच्छा
0: कभी
1: अच्छा
0: कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके
1: जी
0: साथ
1: जी
0: गाए,
1: जी
0: लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है,
1: जी
0: मुझे भी
1: जी
0: अच्छा लगता
1: हाँ, तो
0: है।
1: इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
0: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका
1: अच्छा अच्छा
0: याग्निक का एक गाना गाया है शायद, अलका
1: हाँ हाँ
0: याग्निक का,
1: अच्छा,
0: मोह मोह के धागे
1: मोमो के धागे, दम लगा कर रहेशा, इस फिल्म का
0: दम लगा
1: गाना
0: के
1: है
0: है
1: जी
0: उसका
1: जी गीत,
0: पे।
1: लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
0: हाँ,
1: हारमोनियम पे,
0: मोह
1: तो
0: मोह के है। और
1: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें
1: हाँ
0: प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: है, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना
1: जरा
0: है,
1: से
0: ये
1: गाती थी
0: आपका हमेशा से रवैया रहा
1: या
0: है क्या?
1: नकल नहीं किसी की,
0: नकल किसी की
1: नहीं
0: नहीं,
1: नहीं
0: यानी मिमिक्री नहीं की आपने?
1: मिमिक्री नहीं,
0: अच्छा,
1: अपनी गीता
0: हाँ,
1: दत्त के गाने बहुत मुझे
0: लेकिन
1: पसंद
0: आशा
1: है
0: जी का
1: गीता।
0: गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज में
1: हाँ
0: भी
1: वो
0: गाना
1: तो
0: है,
1: अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है,
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: शब्दोच्चार
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी
0: हाँ
1: उनकी तरह से, तो
0: जी,
1: वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप आ
1: नॉट
0: जाता।
1: नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो,
0: जी जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं,
0: बिल्कुल, वो
1: फिर
0: जिद का
1: ऊपर
0: कुछ,
1: जाके फिर वो आवाज
0: बिल्कुल
1: डबल हो जाएगी, उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में,
1: उसी रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: जी जी जी बिल्कुल
1: हूँ
0: बिल्कुल, अनुभव
1: क्योंकि
0: आप कह रही
1: आजकल वो
0: हैं।
1: जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी
1: आई
0: जी
1: हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा
0: हाँ
1: ऐसा
0: हाँ
1: नहीं होना चाहिए,
0: हाँ
1: कुछ सीखो अच्छी तरह से तालीम
0: जी
1: पाओ,
0: जी
1: और इतना आसान नहीं है, नहीं तो एक
0: बिल्कुल
1: ही लता
0: बिल्कुल,
1: मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी,
0: बिल्कुल
1: बहुत सारे
0: सही,
1: निकलते
0: बहुत
1: थे
0: सारे हो
1: गली
0: जाते
1: चौबड़े
0: हैं,
1: में
0: क्या बात है। तालीम बहुत ज़रूरी है,
1: जी
0: क्लासिकल सीखना
1: बहुत
0: कितना
1: ही
0: ज़रूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3 4 5 साल तो फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक,
0: जी
1: लेकिन आवाज की तैयारी, फिर जो
0: हाँ
1: हरकतें मुरकुतें, फिर अपने गले से नहीं, तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज
0: हाँ
1: नॉट, और
0: हाँ
1: मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है,
0: जी
1: समझो
0: जी
1: वराइटीज
0: हाँ
1: वो करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें
0: जी
1: मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो
1: वो
0: ओरिजिनल है
1: हिसाब
0: पहले वो तो
1: ओरिजिनल वो
0: गाओ।
1: तो गाओ,
0: हाँ
1: नकल न नहीं आती उसमें,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: उसमें आवाज़ की तैयारी भी हो जाती है,
0: हाँ
1: और वो हिसाब से बहुत ज़रूरी है,
0: बिल्कुल,
1: आवाज़ अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता,
0: हाँ,
1: ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अभी
0: खैर बिल्कुल सही।
1: नहीं तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गंवाई तपस्या में,
0: जी
1: वो
0: जी
1: क्यों करते थे इतना,
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही गाते थे ना
0: सही बात, बिल्कुल सही। मन्नदा की बात करते हैं,
1: जी
0: आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड
1: मन्नादा के
0: किया,
1: साथ, हाँ
0: संगीतकार थे श्री रामचंद्र,
1: श्री रामचंद्र,
0: तो मन्नादा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किए?
1: एक शो किया बड़ौदा में,
0: अच्छा,
1: हाँ
0: हाँ
1: बड़ौदा में मन्नादा ने मुझे एक मतलब एक उनको मैंने पूछी था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज़ में वो जो मॉड्यूलेशन होता है
0: हाँ हाँ
1: जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है,
0: जी,
1: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो
0: हाँ
1: फ्लैट लगेगा और उस
0: जी,
1: भाव नहीं आएंगे उसमें,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज़ में नहीं था, किसी के आवाज़ में जाता होता है किसी के आवाज़ में, तो मैंने मन्नादा को पूछा कि मन्नादा ये कैसा लाने का अपनी आवाज़ में,
0: हाँ
1: तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें अच्छा ऐसे आघात करते जाओ, और
0: अच्छा,
1: मेरे आवाज़ में अपने आप आ गया वो सब
0: ओहो
1: रियाज करके,
0: क्या बात,
1: बहुत ही अच्छा, फिर भी उन्होंने ये भी बोला
0: हाँ
1: कि ज़्यादा नहीं करना,
0: हाँ
1: लेकिन तो कंप होगा तेरे आवाज़ में बहुत ही,
0: अच्छा,
1: उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
0: जी,
1: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
0: हाँ
1: तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
0: जी,
1: बाम्बू चा वना च झ झ बहुत से, बाम्बू चा वना झऱ्या चा काठी, ये
0: हाँ
1: शील सजणे सजणे
0: हाँ
1: माझाच पाठी,
0: बिल्कुल,
1: ये
0: उनके
1: लाइन
0: लिए
1: थी,
0: टंग ट्विस्टिंग
1: बहुत
0: रहा वो
1: बहुत 3 बार हुआ टिक 4 बार हुआ, इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा, अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ, तो
0: जी,
1: उन्होंने वो नीचे डांट

0: वगैरह देते हैं वो उनको
1: हाँ,
0: बराबर ये
1: नुक्ता लगा
0: करके
1: के।
0: लाइन
1: क्यों
0: में,
1: ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दें हमें।
0: हाउस ऑफ बैम्बू
1: जी,
0: नंबर 54, द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर, नंबर 54 द हा, जिसे मॉड्यूलेशन
1: हाँ,
0: फोर कि उसके कम करना, उसके ज्यादा फोर्स में गाना, वो भी डिपेंड करता है।
1: जी,
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर, हो बांबूचे घर बांबूचे दार, बांबूची जमीन पिवळी शार, बांबूचे घर बांबूचे दार, बांबूची जमीन पिवळी शार, बांबूच्या घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला, लला लला झुलवित राहील पापा पापा तुला आणि मला। नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर, नंबर 54 द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: उनका तो
1: और
0: क्या
1: वाह वाह, मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा
0: क्लासिकल
1: जाने जाते
0: सिंगिंग,
1: हैं।
0: जी,
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है,
0: हाँ
1: मगर प्योर क्लासिकल
0: उनका
1: गाने
0: प्योर
1: जिनको कहा
0: क्लासिकल,
1: जाए, जो
0: बहुत
1: लाइट
0: अच्छा।
1: कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने हैं।
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे,
1: जी बिल्कुल
0: क्लासिकल
1: बिल्कुल,
0: गाने हैं, ऐसी बात नहीं।
1: बहुत से दिए
0: लेकिन
1: हैं।
0: उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या
1: जी
0: भारीपन था आवाज
1: जी
0: में,
1: जी जी
0: वो उस पर बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है।
1: जी जी
0: मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, ऐ मेरे प्यारे वतन,
1: वाह,
0: बहुत अच्छा, थोड़ा सुना दो।

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो
0: बिल्कुल
1: एक
0: बिल्कुल
1: अंतरा
0: बिल्कुल,
1: है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से
0: सीने से
1: लग
0: लग जाता
1: जाएगा
0: है
1: तो,
0: तू
1: और कभी नन्ही सी बेटी बन
0: बन
1: के
0: के।
1: याद आता है।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छे
0: बहुत बहुत ही
1: लिखावटी
0: संजीदा गाना।
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते संगीतकार।
0: जी, प्रमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी।

0: आपको
1: जी
0: मंच पर गाने का मौका
1: जी
0: मिला
1: जी
0: है। हम रफ़ी साहब को अभी याद करते हैं, रफ़ी साहब के साथ
1: रफ़ी
0: आपकी
1: साहब तो
0: यादें।
1: मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट
0: अच्छा
1: कॉर्नर है। उनके
0: अच्छा
1: उनके साथ बहुत सारे टूर किए,
0: हाँ,
1: साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए
0: ओहो
1: रफ़ी साहब के
0: क्या
1: साथ।
0: बात। हाँ
1: और जो उनसे सीखा है ना,
0: जी,
1: मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी।
0: ओहो
1: हाँ, इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव।
0: वाह
1: और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक
0: जी,
1: पत्रकार परिषद थी,
0: हाँ हाँ
1: कि आप गायक तो मतलब चोटी के हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है,
0: जी,
1: लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमा दे?
0: जी,
1: तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना,
0: हाँ,
1: उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और
0: ओ
1: क्या करूँ, और किसी
0: क्या
1: का
0: बात,
1: किसमें हाथ क्यों डालूँ मैं?
0: विनम्रता की हद है।
1: हद है, हद है।
0: ओ
1: और इतने नम्र, दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: वो
0: जी
1: कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है,
0: हाँ
1: तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें
0: हाँ
1: तान भी थे, तो वो गाया, तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है,
0: जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफ़ी साहब, सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी
0: जी,
1: है
0: क्या बात, वाह वाह।
1: बहुत अच्छा
0: अब
1: लगा
0: रफ़ी साहब के इतने सारे गाने हैं,
1: जी।
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज़्यादा पसंद है?
1: ज़्यादा पसंद नहीं बोलूँगी, सबसे
0: हाँ
1: सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो
0: विक्टोरिया
1: मिल
0: नंबर
1: गए
0: 203।
1: हो,
0: हाँ
1: हाँ,
0: जी, हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो,
0: जी,
1: हाँ,
0: हंसते
1: हंसते
0: ज़ख्म,
1: जख्म,
0: जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: हंसते
1: और
0: ज़ख्म फिल्म
1: हाँ
0: का, जी बिल्कुल वही सुनते हैं।

0: से जहां मिल गया।
1: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा?
2: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब भी उनके मिलने के बाद जहां ही मिल गया।
1: क्या बात है,
2: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
1: क्या बात,
2: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है और 2 किडनी स्टोन की। उस वक्त के रेजर वेजर कुछ लाया था, स्टेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो। तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की। डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था।
1: अच्छा।
2: घर में सासू जी थी। लेकिन मैंने बोला नहीं अभी मैं टूर कैंसिल, क्योंकि ये सब अचानक आया। प्रीप्लान तो हमारा टूर था, तो बोला नहीं मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका।
1: अच्छा।
2: और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा।
2: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे।
1: अच्छा।
2: वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ।
1: ओहो।
2: उस वक्त फोन भी ये भी कुछ नहीं था, तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे। तो ऐसे सब होके भी उन्होंने, ऐसे एक इंसिडेंस है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है।
1: वो
2: दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी भाग्यशाली आप हैं।
2: बहुत बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
1: जी जी, जी।
2: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कंपटीशन में भाग लिए, फिर प्रोग्राम शुरू किए, फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे कब साथ मिला, उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए। बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए। तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का, वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी चढ़ कर, तो मेरा शुरू से लेके चढ़ता ही जा रहा है।
1: वाह वाह।
2: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के, उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
1: क्या बात, परिवार की बात चली है तो आपकी अगली पीढ़ी में
2: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी।
1: अच्छा।
2: शो में शुरू से मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्त हुआ, मैं कंट्रोल्स कर रही हूँ।
1: अच्छा।
2: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना। अच्छा। वो छोटी थी दोनों। तो उनका जाते हैं उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए।
1: बचपन से ही उन्होंने आपको गाते हुए देखा,
2: गाते देखा तो उन्होंने
1: तो वो भी गाती वो आप...
2: और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे नहीं कि कैसा क्यों आए ऐसे ऐसे नहीं। और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे।
1: क्या बात,
2: बड़ी बेटी एकदम हमारी माँ है, वो हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं है।
1: क्या बात है, क्या बात, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
2: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
1: जी जी जी। अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा, आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा?
2: हाँ, ऐसा हम लोग डुएट भी गाते थे।
1: जी,
2: वो
1: जी।
2: मन क्यों बहका रे बहका वो है, फिर कजरा मोहब्बत वाला वो है, फिर अन्ना जी का अपलम चपलम उस पे डांस भी होता था मेरे शो में, ऐसे सब डुएट गाने हम लोग ने। तो वो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ाती रे। हाँ, फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरे ने लिया वो, पंख होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो में, बहुत लोगों को पसंद।
1: यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं।
2: अरे बाप रे।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: पर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।
1: ये है विविध भारती।
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है वहां से पहली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: ये एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
8: सुनिए,
9: सुनिए एक खुशखबरी।
10: कहिए ना।
9: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली।

0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: आप सुन रहे हैं विविध।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र है, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बज रहे हैं, समय हो रहा है कार्यक्रम विवरण का।

शाम को 5:30 पर ग्रामीण महिला बहनें सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम पनिहारी, जिसमें राजस्थानी गीतों के साथ ही सुनेंगी। चर्चा का विषय रहेगा ग्रामीण महिलाओं के लिए सरकारी ऋण योजनाएं, साथ ही गांव में शिक्षा का बदलता माहौल, और बहनें सुनेंगी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में कुछ जानकारी की बातें।

शाम को 6:05 पर सुनेंगे फिल्म संगीत और साथ ही 6:30 पर सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और साथ ही 6:45 पर प्रादेशिक समाचार राजस्थानी में जयपुर केंद्र से।

सात बजे किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम भारती, जिसमें राजस्थानी गीतों के साथ चर्चा का विषय रहेगा। किसान भाई चर्चा करेंगे कि कृषि क्षेत्र के लिए नए तरीके एवं टेक्नोलॉजी का महत्व, साथ ही ग्रीष्मकालीन सब्जियों के प्रमुख कीट एवं उनका प्रबंधन।

7:30 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का, और साथ ही रात्रि 8:15 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके आज के कलाकार हैं मुबारक बेगम।

ये आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र है, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधूली। गोधूली का सुनते हैं आइए पहला भजन।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाश

0: aakashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए sales@gmail.com यानी sales@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
2: श्रोताओं, हम सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधूली। तो आइए सुनते हैं अगला भजन।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधूली। ये आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र है, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हो रहे हैं। समय हो रहा है ग्रामीण महिला बहनों का अपना कार्यक्रम पढ़ियारी का। तो आइए बहनें सुनते हैं कार्यक्रम पढ़ियारी।

है जिनमें सब्सिडी भी मिले हैं। पांचों है महिला शक्ति केंद्र, ग्रामीण लुगाइयों ने रोजगार वास्ते प्रोत्साहित करे है। छठो है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, आ राज्य सरकार द्वारा आ योजना कितई राज्यों जीव बिहार राजस्थान में 10 लाख रुपया रो लोन ने जिनमें सु 50% तक री राशि अनुदान रे रूप में मिले है। सातवो है लखपति दीदी योजना, आ योजना खास रूप से ग्रामीण स्वयं सहायता समूह री लुगाइयों रे वास्ते है जिनके तहत 5 लाख रुपया तक रो ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करायो जा रही है ताकि वह उद्यमी बन सके। आठवो है महिला उद्यमिती निधि योजना, आ योजना छोटा व्यवसाय रे वास्ते 1 करोड़ रुपया तक रो ऋण प्रदान करे है। खास रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों रे वास्ते 5% ब्याज दरों रे साथे ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने लखपति दीदी योजना और महिला उद्यमिता निधि योजना, आ योजना कृषि लघु उद्योग ने डेयरी और व्यापार शुरू करवा रे वास्ते महिला उद्यमियों ने आर्थिक रूप से सशक्त बनावे है। ने स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाएं ग्राम पंचायत या पछे बैंक संकी रे माध्यम से समूह से जोड़ेन भी ऋण रो लाभ ले सके है। इन योजनाओं रो उद्देश्य है आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं नु घर से बारे निकलें, छोटा मोटा व्यापार डेयरी या पछे कृषि आधारित उद्योग शुरू करवा रे वास्ते आर्थिक सहायता प्रदान करनो है। ने आत्मनिर्भरता में पिछड़ा वर्गों ने गरीबी रेखा से नीचे रेवा वाली महिलाओं ने रोजगार रे माध्यम से सशक्त बनावनो है। ने ब्याज दरों में राहत महिलाओं ने आसान और कम ब्याज दरों माते ऋण उपलब्ध करानो है जिनसे उन माते वित्तीय बोझ कम होवेला। ने तकनीकी ने व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि, महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनावा रे वास्ते प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता रे माध्यम से उनकी क्षमता बढ़ावा रे वास्ते ने ग्रामीण महिलाओं रे वास्ते सरकारी ऋण योजना रो खास उद्देश्य उन्हीं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनानो ने स्वयं सहायता समूह ने बढ़ावो देनो और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता ने प्रोत्साहित करनो है ताकि वह बिना कड़ी मोटी गारंटी रे कम ब्याज दर माते ऋण प्राप्त कर सके है। ने सकियो आप वाता तो यूं ही जारी रखला पर अपनी वाता रे वच रे मायने आप सवारो मनोरंजन कराओ इन राजस्थानी गीत सु तो सकियो आप हूँ राजस्थानी गीत ने साथ ही सुनो जरूरी संदेश।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

में शिक्षा रो परिदृश्य तेजी से बदल रियो है, जिनमें तकनीकी समावेशी बेहतर बुनियादी ढांचा ने डिजिटल शिक्षा माते जोर दियो जा रियो है। ने अबार गांव रो टाबर केवल प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित कोणी है, बल्कि वह डिजिटल उपकरणों ने स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ रिया है। इनमें पहलो है डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा। गांव में शिक्षा रो माहौल बदल रियो है, जो ग्रामीण स्कूलों में अबार डिजिटल टूल्स और कहानी हुनवारे माध्यम से पढ़ाई नी और रोचक बनायो जा रियो है, जिनसु शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव आ रियो है। दूजो है बालिकाओं री शिक्षा में वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में अब बालिका मोटी संख्या में स्कूल जा रही है, जिनसु बालिकाएं आत्मनिर्भर बन रही है। तीजो है आधारभूत ढांचा में सुधार। ग्रामीण स्कूलों में अब बेहतर क्लास ने शौचालय ने बिजली जेड़ी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, जो टाबर रे नामांकन रे वास्ते ने सीखवार माहौल नी बेहतर बना रिया है। चौथा है शिक्षा रे महत्व रे प्रति जागरूकता। ग्रामीण समुदाय में शिक्षा रे प्रति समझ बढ़ी है, जिनसु अबार माता पिता नी टाबरों री शिक्षा माते जोर दे रिया है। पांचवा है उच्च शिक्षा तक पहुँच। गांव रा टाबर उच्च शिक्षा रे माध्यम से करियर रा कितई क्षेत्रों में अवसर तलाश रिया है। छठो है डिजिटल साक्षरता स्मार्ट क्लास। झारखंड जीव दूर दराज रे क्षेत्रों में स्मार्ट क्लास रे माध्यम से ग्रामीण टाबरों नी पढ़ावी शिक्षा में सुधार कर रिया है। सातवो है बालिका शिक्षा में वृद्धि। उत्तर प्रदेश जेड़ा राज्यों में निःशुल्क कपड़ा ने किताबें जेड़ी सरकारी योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं रे स्कूल में दाखिला नी बढ़ायो है। पांचवो है इंटरनेट ने स्मार्टफोन रो प्रभाव। ऑनलाइन कक्षा रे माध्यम से ग्रामीण बालक भी अबार बेहतर शिक्षा री सुविधा प्राप्त कर रिया है। नवो है समस्या ने सुधार री आवश्यकता। कितई ग्रामीण स्कूलों में अबार भी बुनियादी ढांचे री कमी है, ने बिजली ने पीवारो पानी ने योग्य शिक्षों री कमी जेड़ी समस्या अबार भी बनियोली है। ने दसवो है मानसिकता में बदलाव। अबार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा नी बोझ कोणी मान्यो जावे है, बल्कि एक आवश्यकता रे रूप में देखियो जावे है। ने शिक्षा रा बदलता माहौल रा प्रभाव है। वो बदलतो माहौल न केवल टाबरों नी ज्ञान प्रदान कर रिया है, बल्कि उन्नी आत्म सामर्थ्य सामाजिक जागरूकता ने नेतृत्व रे गुणों रे साथे तैयार कर रिया है। ने गांव रे भारत रे गाँव में शिक्षा रो माहौल तेजी से बदल रियो है। जठे अबार पारंपरिक शिक्षा री जगह माते डिजिटल साक्षरता स्मार्ट क्लासेस ने व्यवहारिक ज्ञान ले रिया है। ने इंटरनेट और स्मार्टफोन री पहुँच से ग्रामीण छात्र अबार ऑनलाइन कक्षा ले रिया है, जिनसु शिक्षा में समानता वेरी है। जिनरे अलावा बालिका शिक्षा माते खास जोर दियो जा रियो है और स्मार्ट क्लास रे माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में टाबर नी बेहतर शिक्षा मिल रही है। ने सकियो आप वाता तो जारी राखला, पण अपनी वाता रे वचरे मायने आप सबारो मनोरंजन कराओ इन राजस्थानी गीत सु। तो सकियो आप हुनो राजस्थानी गीत ने साथ ही सुनो जरूर संदेश।

अभी आपने सुना कार्यक्रम पणिहारी। ये आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र है, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6 बजने को है। अभी कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ

0: उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र है एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का ये गीत हमने लिया है फिल्म बेटा से, जिसके संगीतकार है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव, गीतकार है समीर और आवाज़ दी है अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोता, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अभी हमने सुना फिल्म आजा नचले का ये गीत, जिसमें संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और गीतकार है पीयूष मिश्रा, आवाज दी है सुनिधि चौहान ने। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें,
2: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: श्रोताओ, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अभी हमने सुना फिल्म पद्मावत का ये गीत, जिसके संगीतकार है संजय लीला भंसाली, गीतकार है A.M. टुराज और आवाज दी है श्रिया घोषाल और स्वरूप खान ने। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला

श्रोताओं, अभी हमने सुना फिल्म राम तेरी गंगा मेले का ये गीत, जिसके गीतकार और संगीतकार है रविंद्र जैन, और म्यूज़िक दिया है, आवाज़ दी है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने। ये आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र है, FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 होने को है। आइए सुनते हैं हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई गई, जिनमें बड़ी संख्या में मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उच्च न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने बताया कि लोक अदालतों में आपसी समझौतों के माध्यम से मामलों का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे अदालतों का समय भी बचता है और पक्षकारों को त्वरित न्याय भी मिलता है।
1: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें कि लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजॉल्व होते ही होते हैं, पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको कि आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है उनको हम इन लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास MACT के केसेस होते हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, इवन रेवेन्यू के केसेस, भाई भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं, इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
0: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विशिष्ट सचिव रश्मि नवल ने आकाशवाणी को बताया कि इस लोक अदालत में 7.5 लाख से अधिक प्रकरण रेफर किए गए।
2: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में 3 का गठन किया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में 3 बेंचेस का गठन किया गया और समस्त DLSAs राजस्थान में 476 बेंचेस का गठन किया गया, मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में। और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
0: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि नई न्याय संहिता का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को दंड देना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में श्री मेघवाल ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोक अभियोजकों से नए कानून पर विस्तार से चर्चा की गई और नई प्रणाली को लागू करने में आ रही व्यवहारिक समस्याओं पर मंथन किया गया।
3: न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें PP और APP की क्या भूमिका हो, इसलिए आपने देखा होगा निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
0: कार्यशाला में राज्य के विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। उन्होंने लोक अभियोजकों की समस्याओं को सुना और उनके प्रभावी समाधान पर चिंतन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला में साइबर अपराध, दिव्यांगजन मामलों और नई आपराधिक विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा है कि आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग हमेशा मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। वे आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय विषय पर 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मसीह ने कहा कि बदलते समय के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग भी जरूरी

0: है, लेकिन उसका विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने तकनीक के उपयोग में न्याय के हितों का उल्लंघन नहीं करने की बात कही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और सुबोध लॉ कॉलेज की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के शिक्षाविदों, न्यायविदों और शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान कार्यों को लेकर एक MOU भी किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीलंका के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस ने न्याय व्यवस्था में तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल R.N. रवि ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का ये ऐतिहासिक जनादेश विकास, सुशासन, राष्ट्रहित और जनविश्वास की सशक्त अभिव्यक्ति है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और ICU जैसे संवेदनशील स्थानों पर लापरवाही बरतने पर संस्थान प्रभारी और यूनिट हेड सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। श्रीमती राठौड़ ने बताया कि अस्पतालों में संक्रमण को रोकने के लिए नियमित रूप से स्टरिलाइजेशन किया जाएगा। उन्होंने सीनियर डॉक्टरों को ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और दवाओं के भंडारण के मानकों का पालन करने को कहा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाल ही में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की मौत और तबियत बिगड़ने के प्रकरण में राज्य सरकार ने एक चिकित्सक सहित 2 नर्सिंग कर्मियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही UTB पर कार्यरत एक चिकित्सक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। 2 अन्य चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज कोटा पहुंचकर अस्पताल का दौरा किया। इस दल का नेतृत्व कर रहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम की स्थिति खराब होने के बावजूद भी वहां सर्जरी की गई, जिसके कारण मरीजों में संक्रमण फैला। श्री मीणा ने जिम्मेदार उच्च अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें नमन करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप का त्याग और स्वाभिमान युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। भरतपुर में इस अवसर पर शौर्य यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी इस यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बाद में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डाला। वहीं पाली जिले के जवाली में रैली निकाली गई और रक्तदान शिविर लगाया गया। और अब मौसम। प्रदेश के पश्चिमी जिले भीषण लू की चपेट में हैं, वहीं दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। आज जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी में दिन का पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। कुछ अन्य पश्चिमी जिले भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। दिन के साथ साथ पश्चिमी जिलों में रात का पारा भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बीती रात फलोदी में न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जोधपुर में पारा 30 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान के और बढ़ने के आसार हैं।
1: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना।

0: रखना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले दो चार दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी।
1: प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत कार्मिकों के प्रशिक्षण का दौर जारी है। इसी कड़ी में डूंगरपुर के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के तीसरे बैच का 3 दिन का प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ। तहसीलदार उज्जवल जैन ने बताया कि ये डिजिटल जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में 16 मई से 14 जून तक मकानों के सूचीकरण का काम किया जाएगा, जबकि मुख्य जनगणना अगले साल फरवरी में होगी। प्रशिक्षण में मोबाइल ऐप के उपयोग, लेआउट मैप बनाने और स्वगणना की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान प्रगणकों को फील्ड में मोबाइल के जरिए डेटा दर्ज करने का व्यवहारिक अभ्यास भी कराया गया। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। वे आज जयपुर में शहर की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा कर रहे थे। श्री मित्तल ने विशेष रूप से महिला और बाल अपराधों सहित SC ST से जुड़े मामलों में जल्द अनुसंधान और प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास पैदा करना होना चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज भूगोल विषय की प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रदेश के 38 जिलों में आयोजित इस परीक्षा में कुल 76.43% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार परीक्षा के लिए कुल 3,95,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 3,02,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख नीलिमा दाधीच ने तैयार किया है। सृष्टि रचियता जगत पिता ब्रह्मा की पवित्र नगरी और अपनी जायकेदार कढ़ी कचौरी के नाश्ते के लिए प्रसिद्ध अजमेर जिले की चिट्ठी में हम आपको हालिया खबरों, ताजा घटनाक्रम और जिले की मुख्य गतिविधियों के बारे में बताएंगे। चिट्ठी की शुरुआत SI भर्ती परीक्षा 2021 की बात के साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। ये भर्ती परीक्षा इस साल दोबारा से सितंबर महीने में संभावित है। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि अब केवल वही 3,83,000 अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा दे सकेंगे जो पहले दोनों पेपर में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इसमें अवसर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार और अपडेट करने का मौका दिया जा रहा है। संशोधन की यह प्रक्रिया 16 मई से 30 मई तक चलेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे ताज़ा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट और रिक्रूटमेंट पोर्टल देखते रहें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिले में इस परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 8,900 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड ने पारदर्शी और सुचारू तरीके से परीक्षा करवाने के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है। जिले में 16वीं राष्ट्रीय डिजिटल जनगणना प्रक्रिया 2027 शुरू हो गई है। पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक नागरिक स्वगणना कर सकते हैं। वहीं 16 मई से 14

0: जून तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर मकानों की गिनती करेंगे। जिले में जनगणना के लिए मास्टर ट्रेनर्स को CMMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने डिजिटल जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम किए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले महीने अजमेर प्रवास पर रहे। उन्होंने अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई वेबसाइट का लोकार्पण किया। ये वेबसाइट भारतीय ज्ञान परंपरा की आधुनिक दृष्टि विषय पर विकसित की गई है। लोकार्पण समारोह में राज्यपाल ने नई तैयार वेबसाइट की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से विश्वविद्यालय की सभी सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है, जिससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और अभिभावकों को सभी शैक्षणिक जानकारियां तथा पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश अग्रवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय अब जीरो कार्बन कैंपस हो गया है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों एक समारोह में 37 दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की। ये कार्यक्रम अजमेर के वैशाली नगर बधिर विद्यालय में आयोजित किया गया। स्कूटी मिलने से इन दिव्यांगों को जीवन यापन, रोजगार और कामकाज में सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने 118 जरूरतमंद व्यक्तियों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। बीते महीने जिले को कई विकास कार्यों की भी सौगात मिली। चंद्रवरदाई नगर योजना में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले JNIT नर्सिंग स्कूल का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी के मुख्य आतिथ्य में शिलान्यास किया गया। साथ ही मानसून के दौरान शहर में जल भराव की समस्या से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर विधायक श्री देवनानी के प्रयासों से केसरबाग पुलिया को चौड़ा और ऊंचा करने के काम के लिए राज्य स्तर पर स्वीकृति मिली। वहीं 3 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस लाइन नाले का काम भी किया जाएगा। जिले की राजकीय विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 बालकों और 16 बालिकाओं को जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। अजमेर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची। मोटी तादाद में मामला राजीनामा निपटाई गया। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहो नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी मानवीय मूल्यां और न्याय रा अधीन काम ली जावनी चाहिए। राज्य सरकार सगला सरकारी अस्पताल में इलाज रा प्रोटोकॉल री कड़ाई पालना करण रा हुकम दीना। और प्रदेश में आए घनखट होना तेज गर्मी रो असर आवता दिना पारो और चढ़वा रा आसार। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। विधिक सेवा प्राधिकरण री ओरू आज देश भर माए साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची। प्राधिकरण रा सदस्य सचिव संजीव पांडे आकाशवाणी समाचार ने बतायो कि लोक अदालत माए राजीनामा लायक मामला ने सुनवाई करी जावे है। वह कहो कि इन अदालतां रो टेम बचबा सागे पक्षकारा ने तुरंत न्याय मिले है।
2: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें की लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजॉल्व होते होते हैं, पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको कि आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है उनको हम इन लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास MACT के केसेस होते हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, इवन रेवेन्यू के केसेस, भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं, इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
1: राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के विशिष्ट सचिव रश्मि नवली आकाशवाणी ने बतायो कि आ लोक अदालत में 7.5 लाख बत्ता मामला सुनवाई सारू रेफर करी गया।
3: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में तो 30 का गठन

0: किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में 3 बेंचेस का गठन किया गया और समस्त डीएलएसएज राजस्थान में 476 बेंचेस का गठन किया गया, मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में। और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
1: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो है कि नई न्याय संहिता रो मकसद सजा देवण री बजाय न्याय दिलावण है। वे आज जयपुर में राखी जी लोक अभियोजकां री राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहा है। इन पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका मेघवाल कहो कि कार्यशाला में लोक अभियोजकां सागे नुआ कानूना रा बारा में विगतवार चर्चा करी जी अरवान लागूकरण में आ रही परेशानियां रा बारा में विचार करी जियो।
2: न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें पीपी और एपीपी की क्या भूमिका हो, इसलिए आपने देखा होगा निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
1: कार्यशाला में राज्य रा विधि मंत्री जोगाराम पटेल ही लोक अभियोजकां री समस्यावां सुनी अरवारा निपटारा रा बारा में विचार कीनो। कार्यशाला में साइबर अपराध, दिव्यांग जन नु जुड़िया मामला और नुआ आपराधिक कानूना ने असरदार तरीकाउं लागू करण रा बारा में खास तकनीकी सत्र राखी चिया। सुप्रीम कोर्ट रा जज न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी ने मानवीय मूल्यां और न्याय रा अधीन काम लेवण माथे जोर दिनो है। वह आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय मुद्दा माथे राखी चिया 2 दिन रा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। न्यायमूर्ति मसीह कहो कि बदलता जमाना सागे नवी तकनीक काम लेवनो जरूरी है, पर तकनीक काम लेवन रे दौरान मानव मूल्यां ने नजरअंदाज नहीं करया जा सके है और न्याय राहितां री अनदेखी नहीं वेवनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और एक गैर सरकारी कॉलेज का नींव रख्या चया इन सम्मेलन में देश भर रा शिक्षाविद, न्यायविद और शोध करण वाला भाग लिनो। सम्मेलन में श्रीलंका रा पहली वाला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस न्याय व्यवस्था में तकनीक रा काम ने घणो खास बतायो। भारतीय जनता पार्टी रा नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल रा मुख्यमंत्री बन गया है। कोलकाता रा ब्रिगेड परेड मैदान में राखी जिया कार्यक्रम में राज्यपाल आरएन रवि शुभेंदु अधिकारी ने पद और गोपनीयता री शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही शिरकत कीनी। वह सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए कहो कि पश्चिम बंगाल री जनता रो ओ ऐतिहासिक जनादेश विकास, सुशासन, देश रा भला और जनता रा विश्वास री मजबूत अभिव्यक्ति है। ध्यान जोग है कि पश्चिम बंगाल में पहली दफा भारतीय जनता पार्टी रो राज आयो है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश रा सगला सरकारी अस्पतालों में अब इलाज जुड़िया सगला नियमों री कड़ाई पालना तय करी जावेला। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आज जयपुर में आला अहलकारां सागे मीटिंग कैरर इं बारा में हुक्म दीना। वह कहो कि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू सरी खिठौना लापरवाही री सूरत में संस्थान रा प्रभारी और यूनिट हेड ने सीधा जिम्मेदार ठहराया जावेला। श्रीमती राठौड़ अस्पताल में संक्रमण रोकण सारू कीटाणु खत्म करण बाबत नियमित तौर काम करण माथे जोर दिनो। कोटारा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑपरेशन रे जरिए जापो भेवण पाछे नवी मायडा री मौतां भेवण और तबियत बिगड़वारा मामला में राज्य सरकार एक डॉक्टर समेत 2 नर्सिंग कर्मचारियों ने मुअत्तल कर दिना है। ईसा गई यूटीबी माथे लाग्योड़ा एक डॉक्टर ने नौकरी निकाल दियो चियो है और 2 डॉक्टरां ने कारण बताओ नोटिस देर जवाब तलब करी चियो है। दूजीकानी चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल काल कोटाचार वाकया रो विगतवार जायजो लीनो और जरूरी हुक्म दीना। चिकित्सा शिक्षा विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि मामला री शुरुआती जांच में चिकित्सा प्रोटोकॉल

0: पालना करण रा हुकम दीना और प्रदेश में एक घनखर ठोणा तेज गर्मी रो असर इंसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का माउंट अबू केंद्र है। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के 7 बज रहे हैं। लीजिए सुनते हैं किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम ग्राम भारती।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: तो किसान भाइयों आप ही होनियो ओ बढ़िया सो राजस्थानी गीत गीत रे बचे आप रो फिर सो स्वागत करना हा। तो किसान भाइयों आप बात कर रहा था कृषि क्षेत्र रे वास्ते नवा तरीका ने टेक्नोलॉजी रे महत्व रा। ने किसान भाइयों हवे बात कराया आप ग्रीष्मकालीन सब्जियों रा प्रमुख कीट

उनरो प्रबंधन रे बारे में। तो किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन सब्जियां जिकन टमाटर है, बैंगन, भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जियों में घना तापमान ने शुष्कता रे कारण कीटों रो प्रकोप घनी ही तेजी से होवे है। इन फसलों ने माई रस चूसवा वाला कीट ने तना छेदक कीट नुकसान पहुंचावे है। तो किसान भाइयों, आप कीट री बात करा तो जिनमें पहलो कीट है सफ़ेद मक्खी कीट। तो किसान भाइयों, ओ कीट मुख्य रूप से टमाटर, लौकी, कद्दू, खीरा, तरबूज, करेला नी हानि पहुंचावे है। सफ़ेद मक्खी रो प्रकोप पत्तियों री निचली सतारे माते सिराओ रे वच माई होवे है ने ओ पत्तिया सु रस चूसे है। इन कीट रो प्रकोप शुष्क मौसम रे दौरान घणो ही होवे है ने बरसात रे साथे इनरी गतिविधियां कम वे जावे है। इनरे प्रभाव सु पत्तिया पीली पड़े सूकड़े नीचे री और मुड़वा लागे है। ओ कीट विषाणु जनित रोग फैलावे है। दूजो है एफिड्स कीट। किसान भाइयों, ओ छोटो नरम शरीर वालो कीड़ो होवे है जो पौधा नी कोमल पत्तियों ने टहनियों रो रस चूसेन उननी कमजोर कर देवे है। जिनसु कमजोर पीला ने विकृत वेन मर जावे है। ए कीट एक चिपचिपो पदार्थ छोड़े है जिन माते काली फफूंदी उग जावे है ने फसलों रे माई भी फैल जावे है। इन कीट सु फल ने फूलों री गुणवत्ता ने मात्रा दोनों कम वे जावे है। तीजो है फल ने तना छेदक कीट। किसान भाइयों, ओ कीट बैंगन, भिंडी ने टमाटर जेड़ी फसलों नी भारी नुकसान पहुंचावे है। ओ कीट पौधों रे कोमल तना ने फलों रे मायने घुसेन उन्नी खावे है। जिनसु डंटल सूख जावे है ने फल खराब वे जावे है ने उपज पूरी तरह से बर्बाद वे जावे है। छोटा लार्वा फल रे डंटल रे पाड़े छेद करीन मायने घुस जावे है ने बीज खा जावे है। जिनसु फल बाजार में बेचवारे लायक कोनी रहवे है। थ्रिप्स कीट। किसान भाइयों, ओ कीट पत्तियों नी खुरचेन रस चूसे है। जिनसु पत्तियां मुड़ जावे है ने चांदी रा धब्बा दिखाई देवा लागे है। ओ घणो ही छोटो होवे है पण घणो ही हानिकारक कीट है। जो फसलों री पत्तियों फूलों ने फलों रो रस चूसेन उननी भारी नुकसान पहुंचावे है। प्याज, लहसुन, मिर्च ने टमाटर जेड़ी फसलों में थ्रिप्स रो हमलो कंद या फल रे विकास ने सीधो प्रभावित करे है। जिनसु उपज रे माई भारी गिरावट आ जावे है। लाल मकड़ी कीट। किसान भाइयों, ओ कीट फसलों ने पौधों रे वास्ते घणो ही हानिकारक कीट है। जो पत्तियों रो रस चूसे उननी पीलो ने बेजान कर देवे है। ए कीट सुई जेड़ा मुंडा सु पत्तियों री कोशिकाओं रो रस चूस लेवे है। जिनसु पौधों रो पोषक माई कमी आ जावे है। ए सूक्ष्म जीव पत्तियों रे नीचे जाल बनावे है। जिनसु प्रकाश संश्लेषण रुक जावे है ने पौधा सूखेन मर जावे है। जड़ कीड़ा कीट। किसान भाइयों, ओ कीट रात्र में पौधों री जड़ों नी काट देवे है। यानी ओ कीट फसलों रे सीधो जड़ों रे माते हमलो करे है। जिनसु जड़ खराब होना रे कारण पौधा धीरे धीरे मुरझा जावे है ने सूखेन मर जावे है। ने किसान भाइयों, जड़ कमजोर होना सु पौधा रे माटी रे माई अपनी पकड़ खो देवे है ने आसानी सु उखड़ जावे है। जड़ों रे माई वियोड़ा घाव रे माध्यम सु फंगस या बैक्टीरिया पौधों रे माई ने घुस जावे है। जिनसु सड़न बढ़ जावे है। किसान भाइयों, सब्जियों रे माई कीट प्रबंधन री बात करा तो जिनमें है पहलो है गहरी जुताई। किसान भाइयों, गर्मियों रे माई खेत री गहरी जुताई करवा सु माटी माई छिपियोड़ा कीड़ा रा अंडा, लार्वा ने प्यूपा तावड़ा सु नष्ट वे जावे है। नीम रो तेल या साबुन रो घोल रो छिड़काव करनो इन सु एफिड्स कीट री रोकथाम होवे है। पीला ने नीला चिपचिपो जाल। किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी एफिड्स ने थ्रिप्स नी पकड़वारे वास्ते प्रति एकड़ 10 से 15 पीला चिपचिपा जाल लगावना। मित्र कीटों नी बढ़ावो देणो। किसान भाइयों, लेडी बर्ड बीटल जेड़ा मित्र कीटों नी बढ़ावो देणो जो एफिड्स नी खावे है। पौधा रे माते पौणी री तेज बोछार रो उपयोग भी करनो चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों, खेत रे आड़े पाड़े रे खरपतवारों नी नष्ट करनो चाहिए क्योंकि ए कीटों रे रहवारी जगह होवे है। युवा पौधों नी नेट या जाली सु ढाकेन भी कीटों सु बचाव कर सका। हाँ, फसल चक्र अपनावनी। किसान भाइयों, एक ही कुल री फसल वार वार कोणी लगावनी। जिकन लौकी रे बाद भिंडी या मिर्च लगावनी। लाल भ्रंग कीट। कद्दू वर्गीय फसलों रे माई ओ घणो ही नुकसान करे है। इन रे वास्ते राख रो भुरकाव सुबेरे समय करनो या पछे नीम सु बणियोड़ा कीटनाशक

0: करो प्रयोग करनो चाहिए। तो किसान भाइयों आगे भी आप वाता तो यूं ही जारी राखोला ने इन वाता रवच आप मनोरंजन कराओ बढ़िया सु राजस्थानी गीत सु। तो आवो किसान भाइयों आप हूणो गीत पण ऊणसु पहला हूणो जरूरी संदेश।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
3: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

भी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम भारती। ये आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र है, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:30 हो चुके हैं, समय हो रहा है श्रोताओं आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो आइए श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का पहला गीत।

तो किसान भाइयों आपाय होनियो बढ़िया सु राजस्थानी गीत गीत रे पचे आप फिर सु स्वागत करा हाँ। तो किसान भाइयों आप वार्ता करी कृषि क्षेत्र वास्ते नवा तरीका ने टेक्नोलॉजी रा महत्व रे बारे में ने इनरे साथे साथे वार्ता करी किसान भाइयों ग्रीष्मकालीन सब्जी रे प्रमुख कीट ने उन रा प्रबंधन रे बारे में। तो किसान भाइयों अभी स्टूडियो रे घड़ी कहवे है कि अभी जावर टाइम वेग्यो है ने मैं काले भी आप वास्ते खेती बाड़ी ने पशुपालन से जुड़ी उड़ी नवी नवी जानकारी रो खजानो में लेन आवोला। तो काल तक रे वास्ते आप रिया रेडियो सखी कंचन ने दीजो आ गया ने राम राम सा।

श्रोताओं, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये गीत हमने लिया फिल्म रंगीला से, जिसके संगीतकार है A.R. रहमान, गीतकार महबूर और आवाज़ दी है उदित नारायण और चित्रा ने। श्रोताओं, अभी हम सुनेंगे फिल्म रामलखन का गीत, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार है आनंद बख्शी और आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। तो आइए सुनते हैं श्रोता ये गीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
2: श्रोता, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सिर्फ तुमसे, जिस गीत को आवाज़ दी है अमीन सबरी और फरीद सबरी ने, और गीतकार है समीर। तो आइए सुनते हैं अगला गीत।

श्रोता, अभी हम सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अभी हमने सुना फिल्म प्रेम रोग का ये गीत, जिसको आवाज़ दी है सुरेश वाड़ेकर और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार है नरेंद्र शर्मा। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत।

अभी आपने सुना फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण का ये गीत, जिसके संगीतकार है आर डी बर्मन, गीतकार है आनंद बख्शी और आवाज़ दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत।

एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। समय हो रहा है कार्यक्रम सुगम संगीत का। आज सुगम संगीत में कलाकार है मुबारक बेगम, तो आइए सुनते हैं मुबारक बेगम की पहली गज़ल।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
4: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
5: अभी हम सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के कलाकार है मुबारक बेगम। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में अगली गज़ल।

0: घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें,
4: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
5: श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार है मुबारक बेगम, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में अगली गज़ल।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र है, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

एजेंसी समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव

0: खिलाड़ियों ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार नवान्न में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ

0: लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान

0: जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र है, FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र से किया जा रहा है।
3: हाँ, यानी कि वही गीत जिनके नाम पर फिल्में बनी हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि जो फिल्म का नाम है वही गीतों में भी आपको मिलेगा। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं सिंघम फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह ने। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, अजय अतुल का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं रामलीला फिल्म का ये गीत, आवाज भूमि त्रिवेदी की। सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा है और संजय लीला भंसाली का संगीत।

0: एस पी बाला सुब्रमण्यम और जॉनिटा गांधी की आवाजों में सुनिए चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत।
1: Move your body, there is no party like a party in Chennai.

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

अन्विता दत्त और कुमार का लिखा ये अगला गीत सुनिए, जिसे संगीतबद्ध किया है विशाल और शेखर ने। बैनी दयाल और नीति मोहन की आवाजें हैं। फिल्म का नाम बैंग बैंग।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के अंत में शानदार फिल्म का ये गीत, अमित त्रिवेदी की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

शानदार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी अमित त्रिवेदी की, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और धुन बनाई थी अमित त्रिवेदी ने। इसी के साथ शीर्षक संगीत का ये कार्यक्रम के लिए यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

सल्तनत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे सब दिन एक।

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

0: कोई।
1: इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे। तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया। फिल्म छाया के लिए आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है। जलते

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

0: फिर वही।
1: मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना।

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार कर

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शिफाली कपूर का नमस्कार। सदियों से होते आए हैं हुस्न इश्क के चर्चे, हुस्न की वादियों में पलता है इश्क। कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं।

0: वो एक मुख्तसर सी मुलाकात, कुछ नाजुक से जज्बात छलके थे उनकी आंखों में, आते आते कुछ ठहर सा गया था उनके लबों पर। एक झलक देख लिया था कभी आपको, वो कसक दिल से आज तक न गई। काश काश वो एक और मुलाकात का वादा तो करते। देख तो कोई है तेरा मुंतजिर कब से, देख तो कोई है तेरा मुंतजिर कब से, अब तो सूरत दिखा हिजाब न कर।
1: रुख से

मोहब्बतों में नुमाइश की ज़रूरत ही कहाँ। ये तो वो जज्बा है जिसमें खामोशी भी गुनगुनाती है। लहराते आंचल की बात न पूछिए, रह गई जो दिल में वो बात न पूछिए। इकरार मोहब्बत की अदा तो देखिए हुजूर, जुल्फें जब वो मेरे चेहरे पर बिखरा देती है, बड़ी सादगी से फिर वो मुस्कुरा देती है।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं छाया गीत। जिंदगी इश्क मोहब्बत से जवां होती है। कल तलक सीने से लगाए फिरते थे दिल अपना, तुमने मुस्कुरा के जो देख लिया दिल मेरा न रहा। ये जलवे ये अदाएं तेरी जुबां है जवां मोहब्बत की, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है तेरी महफिल,

वो दरियाए इश्क तुम जिसमें डूब रहे हैं हम सफीने की तरह। उफ ये लहराते गेसू, ये उड़ता आंचल, जी चाहे कि उम्र गुजर जाए इनके साए तले। पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि

0: महकते गीतों के साथ आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। दीजिए इजाजत शेफाली कपूर को, नमस्कार।
1: ये है विविध भारती,
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून, किया है वहां से टेली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: ये एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया, और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ढलती जाए रात। ये आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र है, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जा रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है।

0: विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naben and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlikar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is said to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vitri Karagam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Kachi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting